कोई तुम में से चुपके से बात कहे या पुकार कर, या रात को कहीं छुप जाए या दिन की रोशनी में खुल्लम खुल्ला चले फिरे, अल्लाह के नजदीक बराबर है। उसके आगे और पीछे अल्लाह के चौकीदार हैं जो अल्लाह के हुक्म से उसकी निगरानी करते हैं। अल्लाह उस नेमत को जो किसी कौम को हासिल है नहीं बदलता जब तक कि वो अपनी हालत को न बदले, और जब अल्लाह किसी कौम के साथ बुराई का इरादा करता है तो वो फिर नहीं सकती, और अल्लाह के सिवा उनका कोई मददगार नहीं होता।

0: पर नेशनल हाईवे हालाणी
1: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601000।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: सचल की सरमस्त धरती
1: फातिये मेहरान सिंध की एक और पहचान
0: GAFM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज़।

0: जी हा समेन प्रोग्राम जशन रहमत में पाण वापसि चुका आहियूं। प्रोग्राम जशन रहमत मां ॿुधो पिया जी एफ एम 88 जे नेटवर्क तां। हिन वक़्तु जशन आमद रसूल 12 रबीउल जो ॾींहुं आहे ऐं तव्हां असां मुस्लमान लाइ ईद जो ॾींहुं आहे ऐं तव्हां सां असां वरी बि साईं अहसान लाइ महिमण आहे जेको साईं आलिम बि आहे ऐं हाफ़िज़ बि आहे। उन खां वरी असां सीरत नबी जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। साईं अस्सलाम अलैकुम।
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
0: سائیں خوش آیو تب ٹھیک ہے؟
1: بالکل خیر الحمدللہ دعاؤں بالکل خیر۔ ہاں بتاؤ خیریت ہے؟
0: فرسٹ کلاس سر۔ جی ایف ایم 88 جے نیٹ ورک تاں تماں اساں اساں تماں کے پروگرام جشن رحمت میں بھلی کر چوں پیا۔
1: ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر۔
0: سر اساں کے تھوڑو پانجو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن جے حوالے سان تھوڑی سان معلومات دیندا اساں کے تھوڑی دل اساں جی خوش مزاج تھی ونی۔ بسم
1: الله الرحمن الرحيم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت فيكم معلما۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
0: صلى الله عليه وسلم
1: وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نبي كريم صلى الله عليه وسلم جن पूरी इंसानियत जे लाइ मुअल्लिम यानी उस्ताद जी हैसियत में थी आया। पाण करीम सलाह वसलम जन जे आमद बेसत जा कई रुख बयान थियल आहिनि। सभ खां पहिरियां त नबी सलाह वसलम जन जे आमद हिन उम्मत जे लाइ रहमत आहे।
0: बेशक
1: अलाह पाक जे तरफ़ां बिलख़ुसूस जेके इनामात अता थियल आहिनि उनमें वॾे में वॾी नेमत नबी सलाह वसलम जन जी बेसत आहे। पाण करीम सलाह वसलम जन पूरी रूई ज़मीन जे लाइ बल्कि पूरी काइनात जे लाइ अलाह साईं रहमत करे मोकिलिया
0: आहिनि
1: ऐं अलाह साईं वॾे में वॾो इनाम जेको बयानु फरमायो आहे उहो इहो आहे त नबी सलाह वसलम जन खे इंसाननि में यानी इंसाननि जी जिन्स में रहबर ऐं रहनुमा करे मोकिलियो ऐं उन रहबरी ऐं रहनुमाईअ मां काइनात जूं सभु शयूं मुस्तफ़ीद थियूं। इंसाननि जूं दिलियूं मुनवर थियूं, कीनो कुदरत उन मां ख़तमु थिया, ज़िद जहालत उन मां ख़तमु थी, इंसाननि जी दिलि में नूरानियत ऐं मुहबत पैदा थी ऐं उन खां अलावा खोड़ सारियूं शयूं पाण करीम सलाह वसलम जमियात मके पाक जे सरज़मीन में जमियात हज़रत अब्दुल्लाह जे घर में जमियात कुरेश ख़ानदान में पर रब साईं हुननि खे पूरी काइनात जे लाइ रहमत करे मोकिलियो
0: ऐं
1: हादी रहबर करे मोकिलियो। उन्हनि मिसालनि में हिकिड़ो मिसाल नबी सलाह वसलम जो पंहिंजो इरशाद मुबारक आहे त मूंखे रब साईं तव्हां उस्ताद करे मोकिलियो आहे। उस्ताद जी जेका हैसियत हूंदी आहे उहो इल्म जो भंडार हूंदो आहे। उस्ताद में सभु सलाहियतूं हूंदियूं आहिनि, उहो बा अख़लाक हूंदो आहे, बा किरदारु हूंदो आहे, उनमें कंहिं बि क़िस्म जो ऐब न हूंदो आहे। त ईअं ई नबी सलाह वसलम बेऐब थी हिन काइनात में आया ऐं उमत खे बि उन्हनि ऐबनि खां आहिस्ते आहिस्ते पाक कयूं ऐं उन्हनि जी तालीम पूरी रूई ज़मीन जे लाइ हुई। उहा मके पाक खां शुरू थी, पोइ मदीने ताईं पहुती ऐं पस गिरदाई में पहुती। ईअं इल्म आहिस्ते आहिस्ते आहिस्ते आहिस्ते पूरी दुनिया जे लाइ आम थी वो छो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन पूरी कायनात के लिए अल्लाह तबारक व तआला के तरफा नबी रहमत थी आया हुआ
0: सुभान अल्लाह
1: सीरत तैयबा ते जितरो ते गाला जे तमाम थोरो आ
0: हकीकत
1: पान करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जो हर अमल हर कम हर नमूनो वो बेहतरी की तरफ होयो
0: बेशक
1: यानी हर इंसान जिकरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जे कै भी किरदार के दिसे कै भी नमूने के दिसे तो इंसान के लिए बेहतरीन नमूनो होयो अल्लाह से कुरान पाक में भी फरमाया तो लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना तवा के जिंदगी गुजारण जो रब साई बेहतरीन नमूनो दिनो है वो नमूनो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन की जिंदगी
0: बेशक
1: तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन की जिंदगी ते तहां नजर रखनो तो हर तरह की रहनुमाई तहां के मिलदी तमा केरे भी किस्म जी मजाक का इंसान होदो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जी तालीमात मा उन जे किरदार मा उन जे गुफ्तगू मा उन जे फरमान मा तमा के बेहतरीन नमूनो मिलंदो है उन नमूने ते तहां बेहतरीन जिंदगी गुजारिंदो जे माता बेहतरीन इंसान थी वेंदो
0: सुभान
1: अल्लाह त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असान दे लाए रहमत दियान अल्लाह पाक के तरफा असान दे लाए नेमत दियान
0: बेशक
1: असान दे तर असान दे लाए अल्लाह पाक के तरफा रहनुमा हादी रहबर दियान
0: बेशक
1: कुरान करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जात अकदस असान का असान दे लाए हर तरह जो नमूनो है
0: बेशक
1: कुरान करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी पे जे भी इंसान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी जिंदगी ते थोरो भी गौर फिक्र कयो आ
0: जी
1: उन्हें के अपनाने जी कोशिश की आ तो वो जिंदगी में दुनिया में भी कामयाब थी हुआ है आखिरत में भी
0: बेशक
1: जिंदगी में यानी दुनिया में कामयाबी जब कई मिसाल सहाबा अकरम जी नजर सहाबा अकरम जी जिंदगी ते नजर रखो सहाबा अकरम जे जे सहाबी सगोरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन सां जितरो वेझड़ाई में गुजारियो ओतरो उन्हें फैज मिलियो वो फैज पूरी दुनिया के मिलियो वो फैज तमा का बेहज थई जारी है सारी आ
0: बेशक
1: पान करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेसद मुबारक 12 रबी अव्वल ते थी
0: बेशक
1: 12 रबी अव्वल सुमर के दियाड़ो सुबह जो पाख पड़ी
0: सुभान अल्लाह
1: जे जे विलादत जे बेसद पूरी कायनात के हैरत में विज छरियो रवायत में आए तो पान करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जने ने धरती ते पैर पातो तो पूरी उम्मत के लिए सजदे में हुआ
0: सुभान अल्लाह
1: पान करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के का गुस्ल रिनल होयो
0: पान
1: करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जे आमद सा नूरानी तजलिया ते इतरा वधी जा ऐ परे तई पोता
0: सुभान अल्लाह
1: जो हदीस में बयान के अल्लाह त शाम जे मालात उन खे बुन रोशन करे छियो
0: सुभान अल्लाह
1: उन वक्त
0: जी
1: जेका बुत परस्त जी बाह हुई एक हजारे साल बरंदर हुई जेके मानु दुनिया में मौजूद समझी अल्लाह पाक जे समझ तरफा समझी पूजींदा हुआ वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जे आमद व बेसत सा जमण सा वो उन वक्त वो विसामी रही खत्म थी रही उन वक्त उतां जा राहिब ऐं उतां जा जाणो माण्हू ई चवनि पिया त हिन वक़्तु काइनात में का नई हस्ती अची वई
0: आहे
1: का नवाण आई आहे को रब पाक जे तरफ़ां को इनकलाब आयो आहे ऐं उहो इनकलाब हुयो नबी सलाहु जी आमद बेसत अलाह फे असां मुस्लमाननि खे नबी सलाहु सां चाहत था फरमाए ऐं नबी सलाहु सां चाहत दुनिया आख़िरत जी कामयाबी आहे दुनिया में इंसान रहे तो अल्लाह पाक के हुक्म में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीके में गुजारे उन अलावा इंसान के लिए भी जो भी कुछ है वो सब नाकामी हर इंसान पांजे लाए कामयाबी चाहे तो वह कामयाबी इंसान की अल्लाह सही हुक्म में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीके में रखी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमद जो खुशी जो दिहाड़ो है उन खुशी के दिहाड़े पे तब असा अल्लाह पाक की इबादत करूँ अल्लाह पाक जा छोरा मनो अल्लाह पाक जा एहसानात गायो ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जे सीरत तैयबा यानी सुन्नत ते जिंदगी गुजारण जो अज़म कयो
0: त
1: अल्लाह पाक असां जी मदद कंदो
0: आमीन
1: अल्लाह के असां समूरन मुसलमानन खे अमल जी तौफीक अता फरमाए
0: आमीन आमीन साईं यसनाल मेमण साहब तव्हां जी वॾी महिरबानी असां जे GFM 88 जे नेटवर्क ते तव्हां असां खे कुझु टाइम ॾिनो तव्हां जा सर लख कुर्ब
1: जज़ाक अल्लाह खैरा
0: वॾी महिरबानी वॾी महिरबानी वॾी महिरबानी जी हाँ समिन साईं एहसन अल्लाह मेमण साहब असां सां लाइन ते जंहिं सीरत नबी सलाहु आल वसलम जन ते गुफ़्तगु कई हाणे नाते रसूल मक़बूल सलाहु आल वसलम हाजी इमदा लाइ फल पोटे जी आवाज़ में

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: सिंध समेत सजे मुल्क में रहमतुल आलमीन खातमुल नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे विलादत जो जश्न मल्हायो पियो वञे। दुरूद ऐं सलाम जे सदाउन जी गूंज मस्जिदनि इमारतनि घिटनि ऐं चौराहनि खे सिंगारियो वियो। ॿिन्ही जहाननि जे सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां मोहबत ऐं अक़ीदत जो इज़हार। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, लाड़काड़ो, सखर ऐं शहीद बेनज़ीराबाद डिवीज़न जे नंढनि वॾनि शहरनि में रैलियूं। मस्जिदनि में ख़ुसूसी इबादतनि जो बंदोबस्त। मिलाद जा प्रोग्राम कराची में ईद मिलादुनबी सलाहु वसलम जो मर्कज़ी जुलूस 2:30 वॻे खां खारादर मस्जिद मां निकिरंदो। सदर आसिफ अली ज़रदारी ऐं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पारां क़ौम खे जशन मिलादुल नबी ते मुबारकबाद। सदर आसिफ अली ज़रदारी जो चवणु आहे त अल्ला ताला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे समूरनि जहाननि लाइ रहमत बणाए मोकिलियो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पंहिंजे पैगाम में चयो आहे त असां हिन मुबारक ॾींहं खे नए नसुल जो तहफ़ुज़, ताबीर ऐं किरदार सीरत अल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी रोशनीअ जे उनवान हेठि मल्हाए रहिया आहियूं। अमेरिका ऐं ईरान नए जंग बंदीअ ते इतफ़ाक़ करे वरितो। कुझु ॾींहनि में सरकारी सतह ते ऐलान कयो वेंदो। रूसी मीडिया दावा कंदे चयो आहे त जंग बंदीअ में आबन हरमुज़मा सामूंडी जहाज़नि लाइ महफ़ूज़ गुज़रगाह बि शामिल आहे। कुझु ॾींहनि में सरकारी तौर ते ऐलान कयो वेंदो, जंहिं बाद ॻाल्हियूं ऐं टेक्निकी गॾिजाणियूं थींदियूं।

0: अमेरिका ईरान सां लागापा मुतासिर करण ऐं पाबंदियूं लॻाइण जी कोशिश कई त चीन पंहिंजे हक़नि ऐं मुफ़ादनि जे तहफ़ुज़ लाइ घुरबल क़दम खणंदो। चीन अमेरिका खे ख़बरदार करे छॾियो। चीनी परदेह वज़ारत जे तर्जुमान चयो आहे त बीजिंग जी गैर क़ानूनी ऐं हिकतरफ़ पाबंदियुनि खे रद्द करे थो। क़तर बि ईरान ते अमेरिकी मुआशी
1: पाबंदियुनि
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न? अदा
6: यार, आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
4: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
6: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
5: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी,
7: 0301-399-2836।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल टू पर एतमाद अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
1: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
2: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो GFM 94

0: नेटवर्क तां
1: अलहमदुलिल्लाह
0: असां अजो के ॾींहं जे मुनासिबत जे हवाले सां तव्हां पंहिंजो असांखे सीरत नबी सलाहु वसलम जन जे हवाले सां थोरो असांखे ॿुधाइजो।
1: मां कान मोहम्मद اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد
0: صلى الله عليه وسلم
1: داوود مطلع صاحب گزارش هيا ته اسان جو پيارو پیغمبر حضور انور صلى الله عليه وسلم جي نبوت رسالت شرف ۽ رحمت آهي
0: جي
1: اسان جو پيارو پیغمبر حضور انور صلى الله عليه وسلم جن جو شان اتم ۽ اعلي آهي
0: बेशक
1: असांजे प्यारे पैगंबर हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शान अल्लाह तबारक व तआला जल जलालहु त काइनात जो ख़ालिक आहे मालिक आहे रज़ाक आहे उन जे सां गॾु रब्बुल इज़्ज़त जी पूरी कल्चर ख़ुदाई खां मथे विची स्टेट जो शान आहे त असांजे प्यारे पैगंबर हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो
0: बेशक
1: अल्लाह पाक जल जलालहु सैयदना आदम अलैहि सलातो सलाम खां वठी सैयदना ईसा रूहुल्लाह ताईं सवाल लख कमो पेश अंबिया अलैहि सलातो सलाम ते जा कया ऐं परवरदिगार आलम आलम अरवाह जे अंदर सभिनि नबियनि खे गॾु करे असांजे प्यारे पैगंबर हज़ूर अनवर सलाहु अलैहि वसलम जे नबूअत ऐं रिसालत जो वाइदो वरितो त जहिड़े वक़्त बि तव्हांजे नबूअत ऐं रिसालत जे दौर में मुंहिंजो आख़िरी पैगंबर मोहम्मद करीम सलाहु अलैहि वसलम जी बेसत मुबारक थिए त तव्हांखे पंहिंजी नबूअत ऐं रिसालत छॾे करे उन आख़िरी पैगंबर मोहम्मद करीम सलाहु अलैहि वसलम जी ताबेदारी ऐं उन जी इताअत करणी पवंदी उन जे नबूअत ऐं रिसालत जे पोइ लॻ बि तव्हांखे रहणो पवंदो। सैयदना आदम अलैहि सलातो सलाम खां वठी सैयदना ईसा रूहुल्लाह ताईं हर हिकु नबी सगोरो पंहिंजे पंहिंजे नबूअत जो दौर पूरो करियो हज़ूर अनवर सलाहु अलैहि वसलम जे चङे दौर में न आया। अलाह तबारक व ताला जल जलालहु असांजे प्यारे पैगंबर खे आख़िर में पैदा कयो उन वाइदे जे तकमील जे लाइ अलाह तबारक व ताला जल जलालहु सैयदना आदम अलैहि सलातो सलाम खां वठी आका इनामदार इमामुल अंबिया हज़ूर अनवर सलाहु अलैहि वसलम खे मेराज कराए अक्सा मस्जिद अक्सा में सभिनि नबियनि सगोरनि जे गॾु करे हज़ूर अनवर सलाहु अलैहि वसलम खे इमामत जो शर्फ़ अता फरमाए। हज़ूर अनवर सलाहु अलैहि वसलम जन सभिनि नबियनि सगोरनि जी इमामत कई ऐं हज़ूर अनवर सलाहु अलैहि वसलम जन सभिनि नबियनि सगोरनि जा इमामुल अंबिया बणिजी विया।
0: सुभान अल्लाह।
1: सैयदना मूसा अलैहि सलातो सलाम जे लाइ हदीस पाक में ईंदो आहे त हज़ूर अनवर सलाहु अलैहि वसलम जन सैयदना उमर फारूक खे हिकिड़ो दफ़ो तौरात जा वरका पढ़ंदे ॾिठो हुयो। हज़रत उमर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अलाह तआला अन्हु जॾहिं हज़ूर अनवर सलाहु अलैहि वसलम जी चीरे खे ॾिठो त हुनजो चीरो मुबारक लाल थी रहियो। उमर फारूक खे चई त तव्हांजी माउ हिन वटि मुअल हुजे आ तव्हां मुअल हुजो आ तव्हांजी माउ तव्हांजे मथो रोए आ। हज़ूर अनवर सलाहु अलैहि वसलम जे चीरे खे ॾिसो जॾहिं फारूक आज़म हज़ूर अनवर सलाहु अलैहि वसलम जे चीरे खे ॾिठो त चई त औज़ु बिल्लाह व गज़ब अल्लाह व गज़ब रसूल मां अलाह जे पनाह में थो अचां अलाह जे रसूल ऐं अलाह जे कावड़ खां। पोइ पाक पैगंबर फरमायो त तूं उमर मूसा अलैहि सलाम ते जेको तौरात नाज़िल थिया उहो थो तिलावत करे पर हिन वक़्तु मूसा नबूअत जो साहिब जेकॾहिं हिन वक़्तु हुजे आहे न उहो बि तौरात न पढ़े आहे उहो मां मोहम्मद करीम जो उमत थी रही आहे। अवी दोस्तो गुज़ारिश ई आहे त असांजे प्यारे पैगंबर खे अलाह तबारक वताला जल जलालू सभिनी जहाननि जे लाइ सभिनी मखलूक जे लाइ अरिड़हं हज़ार मखलूक जे लाइ रहमत आलमीन करे पैदा कयो। हज़ूर अनवर सलाहु अलैहि वसलम जे मथां जेके कंडा उछलींदा हुया हज़ूर अनवर सलाहु अलैहि वसलम जन उन्हनि जे घर वञी करे उन्हनि जी तबक पुछी कंदा हुया। हज़ूर अनवर सलाहु अलैहि वसलम जे जेके तकलीफ़ पहुचाईंदा हुया जेके मस्जिद में निमाज़ पढ़ण न ॾींदा हुया हज़ूर अनवर सलाहु अलैहि वसलम जन बि उन्हनि जे लाइ दुआऊं कंदा हुया। हज़ूर अनवर सलाहु अलैहि वसलम खे अलाह तबारक वताला जल जलालू रहमत करे मोकिलियो हज़ूर अनवर सलाहु अलैहि वसलम जन पंहिंजनि जे लाइ त रहमत हुया पर पड़ावनि जे लाइ बि रहमत हुया जिननि जे लाइ बि रहमत हुया जीतनि जणनि जे लाइ बि रहमत हुया पकी पसंद के लिए रहमत हुआ महज अरड़ा हजार मखलूक जी अल्लाह तबारक वताल जल जलालू दुनिया की तख्ते से पैदा कई है उन समूरी मखलूक के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत पांजे हबीब करीम इमाम उल अंबिया हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमत करे मोकले हुए
0: सुभान अल्लाह सुभान
1: अल्लाह रहमत जो समर जो बेको एडो रहमत जो मिसाल दुनिया में मिली न तो सके
0: हकीकत है
1: एड़ी रहमत जो समंदर जो जेजो को दुनिया में मिसाल मिली न तो सके ये रहमत भरी पैगंबर थे अल्लाह तबारक व तआला जल जलालु खातम नबीयन करे मोकले नबीयन सबीन की पुजानी करे मोकले असांजे पैगंबर हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां बाद में कोई भी दुनिया के तख्ते ते नओ नबी पैदा न थो थी सघे असांजो इमाम अंबिया हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन आख़िरी नबी
0: आहे
1: हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जी विलादत बासादत 571 ईस्वी में अप्रैल महीने के अंदर सूमर के दिहाड़ के बाख फटल के टाइम से थी जो अज 12 रबी अल जो दिहाड़ो आए 12 रबी अल जो दिहाड़ो तवाई असके यो सबक तो दे तो हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जी जिंदगी गुजारी है उसवे हसना उन की जिंदगी है उन जा इखलाक है जेके सोना है उन इखलाकन के अस अपनाईदा थे तो ये दुनिया में भी अस सुरखू होती रहा थे क्यामत के दिहाड़े महशर के मैदान में नफसी नफसी जाल में अल्लाह रब्बुल इज्जत तवाई असके सुरखू करके उठाई
0: सुभान अल्लाह
1: हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी करण से हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करण से अल्लाह तबारक व तआला जल जलाल जो कुर्ब हासिल थींदो आहे छो जो अल्लाह तबारक व तआला जल जलाल कुरान पाक में फरमायो आहे मुंहिंजा पैगंबर तूं पंहिंजी उम्मतनि खे चयो जेकॾहिं मां अल्लाह सां मुहबत रखणु चाहिनि था त तूं मुहम्मद कलीम जी ताबेदारी कनि पोइ अल्लाह मां हुननि सां मुहबत रखंदुमि ऐं समूरा ज़िंदगी जा गुनाह माफ़ करे छॾींदुमि
0: सुभान अल्लाह सर वॾी महिरबानी सर हाफिज़ साईं अलाह से वहीं खुश कंदो लख कुर्ब तव्हां सां के GFM 88 जे नेटवर्क तां तव्हां सां के टाइम नो सर
1: जज़ाकुम अल्लाह खैरा
0: वडी मेहरबानी सर वडी मेहरबानी जी हसमैन असां जो हाफिज़ अब्दुल अज़ीज़ असां सां लाइन ते हुयो जंहिं सीरत नबी सलाहु आल वसलम जन जे शान में कुझु ॿुधायो ऐं असांजी दिलि रूह ठारे छॾियईं ऐं हाणे नात रसूल मक़बूल सलाहु आल वसलम

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-2196-851
1: मेरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
1: हाने यचो मेरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
2: राप्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601000
3: अस्सलाम वालेकुम अदा
4: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा
1: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
4: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
1: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
4: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
5: 03013992836
1: आई मोहम्मद उमर गोरी 0319-1550-724
6: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज जीए एफएम 94

0: जी असमिन प्रोग्राम जशन रहमत वहां बुद्ध पे जी एफ एम 88 जे नेटवर्क ता मावा जो मेज़बान नेमतुल्लाह जूने जो समिन असा तवा सवेर मौलूद बुधो सी साईं इमदादुल्लाह फुलपुटरे जे आवाज़ में पर हन वक्त साईं असा सा लाइन ते अची चुको आ इमदादुल्लाह फुलपुटरो सिंध जो बेता जो बादशाह नात खान उन जे आवाज़ में असा सीरत नबी भी बुधंदासी मौलूद बुधंदासी साईं अस्सलाम वालेकुम पंज मिंट सीरत नबी सलाह वसलम जन ॿुधायो ऐं बाद में असांखे हिकिड़ो मौलूद शरीफ़ ॿुधायो सर
1: मज़बूती उन सां गॾु गॾु अलाह ताला असांजे हिन मुल्क पाकिस्तान जी बि हिफ़ाज़त फरमाए
0: आमीन
1: अलाह ताला सभिनी मोमिननि खे महबूबनि सर खे आख़िरी घड़ीअ में कलमो मौत वारी घड़ीअ में कलमो नसीब फरमाए महबूबनि अलाह उमत मोहम्मदीअ जे लाइ शेर जा कोल मां कुझु अवां खे ॿुधायां
0: जी साईं
1: सजण जी थी विलादता विलादत बादता
0: सुभान अल्लाह
1: सजण जी थी विलादता विलादत बादता संसार पयो चमकी गमगीन पया मुर्की जग सारो पयो जरकी जग सारो पयो जरकी सजण जी थी विलादता
0: सुभान अल्लाह
1: शान वारी पड़ी उन पाक हसी अहिड़ी जणी अमीना शान वारी पड़ी उन पाक हसी अहिड़ी जणी मलाइक मुबारक पया था पथर भी नरम थी पेरन में पवन गुलड़न में थी गुलजारी खुशन हुई थी आई नारी गुलड़न में थी गुलजारी खुशन हुई थी आई नारी आजाद जमी प्यारी आजाद जमी प्यारी सजण जी थी विलादता विलादत बादता संसार पयो चमकी गमगीन पया मुर्की जग सारो पयो जरकी जग सारो पयो जरकी सजण जी थी विलादता
0: कीड़ी
1: कूट किसरा जा पूरा पया नबी जाए नूरानी जलवा पिया कीड़ी कूट किसरा जा पूरा पया नबी जाए नूरानी जलवा पिया शाम जो माऊ मारियूं हुयूं
0: परन
1: शेर आमद जा हूरा परियूं महबूब मिठो जायो रहमत सुखणी आयो महबूब मिठो जायो रहमत सुखणी आयो सभु नातूं मिठियूं गायो सभु नातूं मिठियूं गायो सजण जी थी विलादता इहो जंहिं सुवारीअ ते दिलि पर सुवार ख़ुशीअ मां हली थी सफ़ा तेज़ प्यार पुछनि पियूं हली मां खां दायूं बीहूं तिखी तेज़ दाची था तुंहिंजी ॾिसूं दाची आहे उहा साॻी पर क़िस्मत जाॻी दाची आहे उहा साॻी पर क़िस्मत जाॻी अलाह थियो राज़ी अलाह थियो राज़ी सजण जी थी विलादता विलादत बादता संसार पयो चमकी गमगी न पया मुर्की जग सारो पयो जरकी जग सारो पयो जरकी सिकण दी थी विलादत
0: सुभान अल्लाह
1: हरी मां जे खर्ची भी जानी पुगो अम्मा जो पु आपा तु घरड़ो थियो ऐं बकरियूं अम्मा जूं जे दुबरियूं हुयूं
0: तीरीअ
1: जे पुॼण सां मतारियूं थियूं थियो ॾुकर ख़तम सारो बरकत जो खुलियो चारो पयो बाक़ी हर बारो पयो बाक़ी हर बारो सजण जी थी विलादत भला छो ते रंगीन नादर अली वयो लाल तंहिंखे अहिड़ो मिली कयां प्यार तो मां सजण सां दिली किनम जा दिल भर खे दिल में खिली जेको न विसारींदो कौसर पीआरींदो जेको न विसारींदो कौसर पीआरींदो उल्फत सां निहारींदो उल्फत सां निहारींदो
0: दिल ठारे छॾियव सॼी सिंध जी महिरबानी
1: महबूबन करीमनि जे जशन जी ख़ुशी त मल्हायूं था पर ख़ुशी महबूबन करीमनि खे तॾहिं हासिल थींदी जॾहिं महबूबन करीमनि जे असां नक्शे क़दम ते हलण जी कोशिशि
0: कंदासीं
1: तंहिं करे मां दोस्तनि खे मोहम्मद पुछां त ख़ुदा महबूबनि जे रसियल हुकमनि जी पालदारी करनि ऐं उन्हनि खे मज़बूती सां पकड़नि इहा ई असांजे लाइ निजात जो हिकिड़ो रस्तो आहे
0: वॾी महिरबानी साईं वॾी महिरबानी सर लख घुर्ब लख घुर्ब जी समय असांजे सिंध जो हिकिड़ो वॾो नाम हाजी इमदाद लाइ फुल पोटो खां ॻाल्हि ॿोल बि ॿुधीसीं ऐं पंहिंजो नात बि ॿुधीसीं लख कुर्ब साईं जा त समिन असांजो पंहिंजो जेको प्रोग्राम आहे ख़ुसूसी प्रोग्राम आहे 12 रबी अलवल जे हवाले सां जशन रहमत जो प्रोग्राम आहे GFM 88 जे नेटवर्क तां ऐं अवां ॿुधो पिया असांखे मां मुंहिंजो मेज़बान नेमतुल्लाह जुणे जो

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

जी एफएम नेटवर्क आप सबको ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल से मुबारकबाद पेश करता है। दिल को सुकून देने वाली नातें, रोशनियों की बहार और इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंग, सब कुछ सुने सिर्फ जी एफएम पर। आए मोहब्बत, अकीदत और अखवत का पैगाम आम करें, क्योंकि यही है जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनिए, खुशियां बांटिए और पैगाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे बढ़ाइए। जी एफ एम

चाहत ही फतह करते हैं लोगों के दिलों को, चाहत ही लोगों के दिलों को। हम ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। यू आर शुरू टू जी वीडियो FM 88 और साथ ही साथ प्यारा सा चेहरा, मीठी सी आवाज, मासूम से दिल सूटी वैसी परफेक्ट पर्सनैलिटी, खुश मिजाज अंदाज, मुझे कहते हैं आज ये रुखसार सिंध की आवाज। हाउ आर यू, कैसे हैं आप? आई होप कि जी जहाँ जहाँ भी मौजूद हैं बिल्कुल टिप टॉप सेट कूल, एकदम स्ट्रांग हेल्थ के साथ मुझे सुन रही हैं। जहाँ जहाँ भी मौजूद हैं बिल्कुल मेरे साथ साथ मौजूद हैं और मेरा पूरा पूरा साथ देने के लिए पूरी पूरी तैयार है। पूरे पूरे एक बजे तक आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, जो कि आप सुनते हैं एवरी मंडे टू थर्सडे फ्रॉम 11 टिल 1 पीएम। आपको मेरा साथ रहता है, आज भी रहेगा। इसके अलावा जी, वो तमाम तो लोग जो कि इस वक्त हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे हम बस में, ट्रक में, रिक्शे में, कार में, बाइक पे, जिस पे भी जहां भी जा रहे हैं, आपको कहेंगे हैव अ सेफ सेफ जर्नी, बट लेट देम नेवर अपनी गाड़ी और अपने गुस्से की स्पीड को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए और ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली। बफ़ज़ली खुदा खैरियत मौजूदा और तवक्कुल खुदा खैरियत मतलू।

इसके अलावा जी तमाम पर सुनने वालों को जश्न ईद मिलाद नबी की बहुत बहुत मुबारक. आज सबसे बड़ी ईद का दिन, और ये जो सबसे बड़ी ईद का दिन है ये वो ईद है जिसके सदके में बाकी की दो ईदें दी गई हैं हमें. बताता है खुद को खुदाए मोहम्मद, बताता है खुद को खुदाए मोहम्मद, ये दुनिया बनी है बराए मोहम्मद. जिनके आने से रोशन हुए हैं दो जहां, उनके कदमों की बरकत पे लाखों सलाम. आज की ये स्पेशल ट्रांसमिशन जिसमें आपको मेरा साथ रहेगा पूरे पूरे एक बजे तक, और इसी में हम आगे चलेंगे जी. और इस खूबसूरत सी नात के साथ एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे. स्टे ट्यून्ड, जिंदगी गुलजार है.

आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चूपर एटमाद, अइंबा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त, रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाई, आसिम हुसैन आरान।

0: ਵਧਣ ਜਿਗਰ ਜਾਂ ਮਰਜ਼, ਹੈਪਾਟਾਈਟਸ ਬੀ ਸੀ, ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ, ਮਸਾਨੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਜੋ ਬਗੈਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਇਲਾਜ ਕਯੋ ਵਣੇ ਥੋ, ਗੁਰਦਨ ਜੋ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਚਿਹਰੇ ਜੋ ਰੰਗ ਸਾਂਵਰੋ, ਚਿਹਰੇ ਜੀ ਖਾਰਿਸ਼, ਫਟ ਫੁਰੜਿਓ, ਬਾਰਨ ਮੇ ਕਦ ਜੋ ਨ ਵਧਣ, ਮਰਦਨ ਐਂ ਔਰਤਨ ਮੇ ਵਜ਼ਨ ਜੋ ਨ ਵਧਣ, ਉਨਨ ਸਭਨੀ ਬਿਮਾਰਨ ਜੋ ਕਾਮਯਾਬ ਇਲਾਜ ਕਯੋ ਵਣੇ ਥੋ, ਰਾਬਤੇ ਲਏ 0301-2196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385 69।

नजीर खोसो ने हमें ज्वाइन किया है सोबरपुर बलूचिस्तान से. इनके बहुत सारे कमेंट आए हैं, साथ साथ कॉलर भी मेरे साथ एक अदद लाइन पे मौजूद है. चेक करेंगे कॉलर कहाँ से. जी हेलो. ओके जी हेलो. और ये कॉल हो गई है ड्रॉप. तो 03000113488 इसके ऊपर कॉल करेंगे और कॉल करने के बाद सुनाएंगे एक बहुत खूबसूरत

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद आई बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनिया जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनिया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ति जिलाई आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
0: खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569 खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569 खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
2: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94

0: ओके जी, थैंक यू। किसकी आवाज में है ये नात?
1: ये नात।
0: अच्छा, टाइटल क्या है इसका?
1: टाइटल पता नहीं।
0: चले मैं इसको सर्च करती हूँ जी। और थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। 03000113488 के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं मुझे, और कॉल करने के बाद मुझसे बात कर सकते हैं। हमारी ये स्पेशल ट्रांसमिशन जो कि आप सुन रहे हैं और सुन पाएंगे अब से ठीक ठीक पूरे पूरे एक बजे तक, और हम प्ले करने जा रहे हैं एक और बहुत ही खूबसूरत सी नात। इसको हम प्ले करेंगे और इसी के साथ हम जाएंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक और न्यूज ब्रेक, दोनों के बाद वापस आएंगे। हम प्ले करेंगे आतिफ असलम की आवाज को। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, जाते नबी बुलंद है जाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद।

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: इंतजामिया मौजूद वार्ड में 16 बार दाखिल हुआ, एक बार के बचाए हुए है। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी है तो सड़ी फो थे पंच बार मड़ वासन हवाले क्या वन बेन जा मड़ भी सुण बाद वासन हवाले क्या वा साने जी भी शफाफ जांच कई वी।
2: हमें क्या पता कि बच्चे 10 जने 20 गायब हुए हूँ, किसी बलदान को इन्होंने
3: डॉक्टर ने कहा कि डब्बे में बच्चे लेके गया और उस एसएचओ नदीम ने बोला है।
1: सड़ी फोत थे बारन के वारसन जा अस्पताल इंतजामिया संगीन इल्जाम, वारसन मौजूद बाहे हथ से लगाई वही है, बाहे पान लगे हा तो अस्पताल जो अमलो भी सड़ी जख्मी थे हा, बाहे वक्त वे अमलो बारन के बाहर करण बदरा पान भजी वो हो, जिम्मेवार खिलाफ कार्रवाई कई वे। वजीर आजम शहबाज शरीफ पिम्स अस्पताल में बाहे वाले वाके जो नोटिस वरतो, वाके की शफाफ जांच कर जिम्मेवार खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। फोती बारन के वारसन से हमदर्दी ए दुख जो इजहार, शहबाज शरीफ चयो है तो बारन से पेश आयल वाक्य इंतहाई अफसोसनाक है, नुकसान जो अजालो नथो करे सकजे। इस्लामाबाद इंतजामिया पिम साने की जांच लाए कमेटी जोड़े छड़ी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में 8 रुकनी साने की जांच कंदी।

0: सिंध समेत सजे मुल्क में रहन तो लाल में खातमुल नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत जो जश्न मल्हायो पियो वञे। ॾींहं जी शुरुआत वफ़ाकी राजधानी में 31 तोपन ऐं सूबनि में 21 तोपन जी सलामी सां कई वई। मस्जिदनि में बि ख़ुसूसी दुआनि जो अहतमाम। मुल्की तरक़ी ऐं खुशहालीअ लाइ ख़ासि दुआऊं घुरियूं वयूं। नंढनि वॾनि शहरनि में ॿिन्ही जहाननि जे सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां मोहबत ऐं अक़ीदत जो इज़हार। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, लाड़काणो, सखर ऐं शहीद बेनज़ीराबाद डिवीज़न जे नंढनि वॾनि शहरनि में रैलियूं। हर तरफ़ नातन ऐं दरूदनि जी बहार। सदर आसिफ अली ज़रदारी ऐं वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ पारां क़ौम खे जशन मिलादत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते मुबारकबाद। सदर आसिफ अली ज़रदारी जो चवणु आहे त अल्ला ताला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे समूरन जहान लाइ रहमत बणाए मोकिलियो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ पंहिंजे पैगाम में चयो आहे त असां हिन मुबारक ॾींहं खे नए नसुल जो तहफ़ुज़, ताबीर ऐं किरदार सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी रोशनीअ जे उनवान हेठि मल्हाए रहिया आहियूं।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 03201800003।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, ठरी रोड, मेहरापुर। 03003385।

0: जॻह जा पावा ऐं पाइप ॾेढ ॿ चार छह नव ऐं ॿारहं इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओं दुकान खोलियो अथम पर हले ई नथो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
1: न अदा।
0: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठनि में जीअं मीरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंद कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधा।
0: ऑफिस जी मीरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मीरापुर।
2: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
3: 0301-399-2836
0: ऐं मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1550-724।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।
5: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर 0300-338-5569।
4: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GA FM 94।

साथ साथ आप लोगों के मैसेजेस हैं मेरे पास और कहते हैं मिठरी रुखसार जश्न ईद मिलादुन्नबी मुबारक हो, सफदर बलोच मोरू से हमारे से मौजूद हैं, कहते हैं कि अर्ज किया है नबियों का सरदार नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा आया है, दोनों जहानों के हैं मुस्तफ़ा। थैंक यू सो मच। और इसके अलावा

0: लेकिन मुझे
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
2: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं,
3: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राब्ते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 03000072734। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
5: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश, आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
4: हाँ नहीं अचो, मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे हालानी।
5: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 आई 02424601000।
6: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप, कोटली कबीर रोड मेहरापुर, कराची इस्लामाबाद जो मशहूर। डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन, एमए, डीएचएमएस सिंध, आरएचएमपी इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट, फैमिली फिजिशियन, सीनियर।

0: सरापा इश्क बनकर हसीनों के हसी आए हैं, सरापा इश्क बनकर हसीनों के हसी आए हैं, मुबारक हो जहां को रहमतुल आलमीन आए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार फिर से तमाम आशिकाने रसूल को जश्न ईद मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारक। ईद मिलादुन नबी स्पेशल ट्रांसमिशन आपका और मेरे साथ पूरे पूरे एक बजे तक का। कॉल कर सकते हैं 03000113488 के ऊपर। नेक्स्ट कॉलर हमारे लाइन पे मौजूद है। हेलो,
1: हेलो,
0: वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: सफदर बलोच।
0: सफदर बलोच कैसे हैं? ठीक ठाक हैं,
1: शुक्र अल्लाह।
0: मैं बहुत अच्छी हूँ। मुझे ये बताइएगा कि नाच सुनाएंगे हमें?
1: जी जी,
0: तो सुनाइए प्लीज।
1: परान कादर का नाच है।
0: जी जी सुनाइए।
1: محمد کے غلاموں کا نام
0: ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ کچھ اور کہنا چاہیں گے؟
1: تھینک یو میڈم، آپ کو مبارک ہو۔
0: تھینک یو سو مچ، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ تھینک یو، بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اور اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں آگے۔

छा तव्हां जो ख़्वाबु आहे डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी, नर्स या हेल्थ प्रोफेशनल बणजण, त पोइ तव्हां लाइ आहे हिकु बहितरीन मौक़ो। सखर जो मोहतबर इदारो सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़।

आगे जी सफदर बलोच के बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, थैंक यू सो मच आपके बहुत सारे मैसेजेस. और फाइनली इसी के साथ हम लेंगे आपसे इजाजत और लास्ट में प्ले करूंगी जी आतिफ असलम की आवाज को. और इसी के साथ फाइनली इजाजत लेंगे आपसे. इंशाल्लाह हमारी चुटचाट होगी कल ऑन सेम टाइम सेम चैनल सेम शो द सेम आवर. जैसे ना मत भूलिएगा, जिंदगी गुजार है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. एक बार फिर से जश्न ईद मिलादुन नबी आपको बहुत बहुत मुबारक हो. इसी के साथ फाइनली दिस इज मी आरजी रुखसार साइंस आउट. टेक केयर, गुड बाय, अमान खुदा, अल्लाह हाफिज़.

0: ये है FM नेटवर्क, आप सबको ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल से मुबारकबाद पेश करता है। दिल को सुकून देने वाली नातें, रोशनियों की बहार और इश्के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंग, सब कुछ सुने सिर्फ जीए FM पर। आए मोहब्बत, अकीदत और अखवत का पैगाम आम करें, क्योंकि यही है जश्ने ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनिए, खुशियां बांटिए और पैगाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे बढ़ाइए जीए FM नेटवर्क पर।
1: अब आप सुनेंगे जीए FM नेटवर्क पर KTN न्यूज।

0: पे बच्चा दस जने अभी गायब हुए हूँ, किसी वालदेन को इन्होंने
1: बताया डॉक्टर ने कहा कि डब्बे में बच्चे लेके गए और उस SHO नदीम ने बोला।
2: इस्लामाबाद जे पिमरी अस्पताल जे बारन वारे वार्ड के बाहे लगी वही 15 ताजा चावल बार सड़ी फोत थी रहा है के बचाया वयो। पिम्स जे डायरेक्टर बाहे साने में 15 बारन जे फोत थियण जी तस्दीक करे छड़ी। अस्पताल इंतजामिया मौजूद वार्ड में 16 बार दाखिल हुआ, एक बार के बचाया वयो। फोती बारन मां 11 जी सुजाणप थी वही। 5 लाश वारसन हवाले कया वया। सड़ी फोत थियल बारन जे वारसन जा इंतजाम ते संगीन इल्ज़ाम, वारसन मौजूद बाहे लगी हाथ है। अस्पताल जो अमलो भी सड़ी जख्मी थे हा। बाहे वक्त भी अमलो बारन के बाहर करण बदरा पान भजी वयो हो। पिमसाने बाद वजीर आजम की सदारत हेठ आला सतही इजलास लागापियल आफिसर से सख्त कावड़ जो इज़हार। सेहत वाले वफाकी सेक्रेटरी असलम गोरी के उहदे तां हटाए छड़ियो। साने की जांच लाइ आला सतही कमेटी भी कायम। अगोण सेक्रेटरी शाहिद खान कमेटी जो सरबराह हूं। वाके की शफाफ जांच करे जिम्मेवार खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। फोती बारन के वारसन से हमदर्दी दुख जो इजहार। शहबाज शरीफ चवाए तो नुकसान जो अजालो नथो करे सकजे।

0: पंजो खान चांडो में नींगर जो कुहाड़ियों लगल लाश हथ लाश जिस जानब 14 साल के नींगर बरकत चांडो के नाले से गई वही पुलिस है टिन जणन के शक की बुनियाद से गिरफ्तार किया है। वाके बाबत जांच कर रहा हूं। मटियारी में नौजवान फुसरो असरार तौर बाग मां लाश मिलो है। कौमी शाहरा के घर में मीरन के बाग मां नौजवान जो लाश हथायो है। अस्पताल मुंतकिल कल लाश की जहां से पुट मोहम्मद इस्माइल तौर सुणप थी है।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: माशाला फौजी पाई फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर असा वट जगह जो डारियों जगह जा पावा आई पाइप डेढ़ ब चार छह नव आई बारह इंच में प्लेन आई कॉलम में मौजूद आहिन। फौजी भाइरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी। राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 आई तौकीर अहमद 0306-1623-793।
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाए 0320-1800-003।
4: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
3: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एतमाद बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राबते जे लाइ आसिम हुसैन आराई
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सोम

0: मुलाकात में नबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी विलादत जो जश्न मल्हायो पियो वञे शुरुआत वफाकी राजधानी में 31 तोपन ऐं सूबनि में 121 तोपन जी सलामी सां कई वई। मस्जिदनि में बि ख़ुशूसी दुआउनि जो इहतमाम, मुल्की तरक़ी ऐं खुशहालीअ लाइ ख़ासि दुआऊं घुरियूं वयूं। नंढनि वॾनि शहरनि में ॿिन्ही जाननि जे सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां मोहबत ऐं अक़ीदत जो इज़हार। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, लाड़काणो, सफ़र ऐं शहीद बेनज़ीराबाद डिवीज़न जे नंढनि वॾनि शहरनि में रैलियूं, हर तरफ़ नातन ऐं दुरूदनि जी बहार। कराची में निकतल रैली में वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह ऐं वज़ीरनि बि शिरकत कई। सदर आसिफ अली ज़रदारी ऐं वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ पारां क़ौम खे जशन मिलाद उन नबी ते मुबारकबाद। सदर आसिफ अली ज़रदारी जो चवणु आहे त अल्ला ताला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे समूरनि जाननि लाइ रहमत बणाए मोकिलियो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ पंहिंजे पैगाम में चयो आहे त असां हिन मुबारक ॾींहं खे नए नसुब तहफ़ुज़ ताबीर ऐं किरदार सीरत उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी रोशनी जे उनवान हेठि मल्हाए रहिया आहियूं। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास इराक़चीअ जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सां फोन ते राब्तो। ईरानी सरकारी टीवी मूजिबि अब्बास इराक़ची फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सां खिते जी सूरतहाल ते ॻाल्हियूं कयूं आहिनि। ॿिन्ही अॻवाननि गॾियल दिलचस्पी वारनि मामलनि ते बि ग़ौर कयो आहे। अमेरिका ऐं ईरान ने जंगबंदीअ ते इतफ़ाक़ करे वरितो। कुझु ॾींहनि में सरकारी सतह ते ऐलान कयो वेंदो। रूसी मीडिया दावा कंदे चयो आहे त जंगबंदीअ में आबना हरमुज़मा सामूंडी जहाज़ लाइ महफ़ूज़ गुज़रगाह बि शामिल आहे। कुझु ॾींहनि में सरकारी तौर ते ऐलान कयो वेंदो, जंहिं बाद ॻाल्हियूं ऐं टेक्निकल गॾिजाणियूं थींदियूं। फ़िलहाल अमेरिका ईरान ते वधीक हमला न कंदो। अमेरिकी परॾेही वज़ीर इतिहादी मुल्कनि खे आगाह करे छॾियो। अमेरिकी मीडिया मूजिबि मार्को रूबियो इतिहादी मुल्कनि जे हमनसबनि खे फोन ते आगाह कयो आहे त अमेरिका ईरान ते हमलनि खे पाबंदियुनि ॾांहुं मुंतकिल करे रहियो आहे। ईरान ते वधीक हमलनि जो इम्कान नाहे। ओमान सां आबना हरमुज़ में वक़्ती रस्ते ते इतफ़ाक़ जो मक़सदु आबना हरमुज़ जो खुलणु नाहे। अमेरिका आबना हरमुज़ मां बारूदी सरंगियूं हटायूं आहिनि त जहाज गुज़ारे ॾेखारे। ईरानी परॾेही वज़ीर काज़िम ग़रीबावादी चयो आहे त आबना हरमुज़ बाबति अमेरिकी दावाऊं कूड़ियूं आहिनि। ओमान सां मुआहिदे जो मक़सदु बि आबना हरमुज़ जो खुलणु न हूंदो। नवकोट भरिसां ॻोठ पंजू ख़ान चांडियो में नींगर जो कुहाड़ियूं लॻल लाश हथ। लाश जी सुञाणप 14 सालनि जे नींगर बरकत चांडियो जे नाले सां कई वई। पुलिस चयो आहे त टिन ॼणनि खे शक जी बुनियाद ते गिरफ़्तार कयो आहे। वाके बाबति वधीक जांच करे रहिया आहियूं। मटियारी में नौजवान पुरइसरार तौर फोत बाग मां लाश मिलियो। क़ौमी शाहरा जे घर में मीरन जे बाग मां नौजवान जो लाश हथायो आहे। इस्पताल मुंतकिल कयल लाश जी जांच जे पुट मोहम्मद इस्माइल तौर सुञाणप थी आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 03201800003।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाए। जाएं। पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385 69।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
5: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
4: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
5: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601100।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
1: न अदा।
3: यार आजी कल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हाँ दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नर्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
4: 0301-399-2836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

उस जलवन मां से पहले

सरकार कदा से

0: This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.
1: Irshad Autos, I Honda Showroom, Mehrapur. Honda Motorcycle jo pur aitmad ai ba akhtiyar idaro Irshad Autos ai Honda Showroom Mehrapur nine motorcycle ji sale company je mukarrar kar rate te dastiyab hai service center Atlas Honda Limited jo warranty claim center service area jithe Honda Motorcycle ji behtareen service kai vendi hai Honda company ja tamam genuine spare parts khususi riayat te maujood Irshad Autos te panji Honda Motorcycle ji karayo training computerized Japanese testing machine nazariye jehme mile thi motorcycle ki karkardegi tamam behtar fuel adjustment rpmg adjustment computerized Japanese machine zariye kai bani thi honda je qualified technician ji zair nigrani irshad autos halani road mehrapur rabte de lai 0320180003
2: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
3: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
2: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं
3: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राब्ते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 0300-002724 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-3865453
4: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एचलेस होंडा मोटरसाइकिल चुप

0: बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाई आसिम हुसैन आराई 03073592120।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आजी कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 03013992836
3: आई मोहम्मद उमेर गोरी 03159155724।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: क्या पता कि बच्चा 10 जने अभी
1: इस्लामाबाद जे पीएमजी अस्पताल जे ॿारनि वारे वार्ड के बाहि लॻी वई। 15 ताज़ा ॼावल ॿार सड़ी फोत, हिक खे बचायो वियो। पीएमजी जे डायरेक्टर बाहि साने में 15 ॿारनि जे फोत थियण जी तसदीक करे छॾी। इस्पताल इंतिज़ामिया मूजिबि वार्ड में 16 ॿार दाख़िल हुया, हिक ॿार खे बचायो वियो। फोती ॿारनि मां 11 जी सुञाणप थी वई। 5 लाश वारसनि हवाले कया विया। सड़ी फोत थियल ॿारनि जे वारसनि जा इंतिज़ामिया ते संगीन इल्ज़ाम। वारसनि मूजिबि बाहि लॻी हा त इस्पताल जो अमलो बि सड़ी ज़ख़्मी थिए हा। बाहि वक़्त अमलो ॿारनि खे ॿाहिरि करण बदिरां पाण भॼी वियो हो। पिमसाने बाद वज़ीर आज़म जी सदारत हेठि आला सतह इजलास, लाॻापियल आफ़ीसरनि ते सख़्त कावड़ जो इज़हार। सिहत वारे वफ़ाक़ी सेक्रेटरी असलम घोरीअ खे उहिदे तां हटाए छॾियो। साने जी जांच लाइ आला सतही कमेटी बि क़ाइमु। अॻूणी सेक्रेटरी शाहिद ख़ान कमेटीअ जो सरबराह हूंदो। वाक़े जी शफ़ाफ़ जांच करे ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई जी हिदायत। फोती ॿारनि जे वारसनि सां हमदर्दी ऐं ॾुख जो इज़हार। शहबाज़ शरीफ़ चयो आहे नुक़सान जो अज़ालो नथो करे सघिजे। फिम्स में मुक़रर मयार मूजिबि बाहि विसाइण जा इंतिज़ाम न हुया। बाहि खां इंसानी जाननि खे बचाइण वारा इंतिज़ाम बि नाकाफ़ी हुया। शुरूआति में फिम्स अमले बाहि विसाइण लाइ पहुतल फायर ब्रिगेड अमले खे रोकण जी कोशिश कई। इस्लामाबाद फायर ब्रिगेड जी शुरूआति रिपोर्ट में फिम्स इस्पताल बाबति छिरकाईंदड़ इंकशाफ़। फायर ब्रिगेड जी रिपोर्ट मूजिबि इस्पताल जे दरवाज़नि ते बि ताला लॻल हुआ। एमरजेंसी गेट बि मौजूदु न हुआ। बाहि विसाइण इंसानी जाननि खे बचाइण लाइ बि मुनासिब इंतिज़ाम न हुया। पिम्स साने ते मुल्की सियासी क़यादत ॾुखारी। फोती ॿारनि जे वारसनि सां हमदर्दीअ जो इज़हार। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी, वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह, सीनियर वज़ीर शर्जिल इनाम मेमण ऐं ॿियनि पारां साने ते ॾुख जो इज़हार। सदर आसिफ अली ज़रदारी चयो आहे त साने जे ज़िमेवारनि जूं ताइन करे कार्रवाई कई वञे। मुराद अली शाह चयो आहे त पिम्स साने जो अफ़सोसनाक ऐं ॾुखाईंदड़ आहे। शर्जिल इनाम मेमण चयो त मुतासिरनि जे ॾुख में शरीक आहियूं। मोहसिन नक़वी चयो आहे त साने ते दिली सदिबो रसियो आहे।

15 ॿारनि जो फोत थियण हादसो नाहे। सिहत वारो वफ़ाक़ी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल साने जी ज़िमेवारी क़बूल करे। सिंध हुकूमत जे तर्जुमान सादिया जावेद चयो आहे त हीउ संगीन गफ़लत ऐं इंतिज़ामी नाकामी जो मामिलो आहे। पिम्स वाक़े बाद अॻवाणनि वफ़ाक़ी वज़ीरनि बि सिहत वारे वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल खां इस्तीफ़ा जो मुतालबो करे छॾियो। अॻोणे वफ़ाक़ी वज़ीर फवाद चौधरी चयो आहे त ज़िमेवारी क़बूल कंदे मुस्तफ़ा कमाल इस्तीफ़ा ॾे। शरीन मज़ारी चयो आहे त मुस्तफ़ा कमाल साने जी ज़िमेवारी क़बूल करे।

सिंध समेत सजे मुल्क में रहमतुल्लाह में खात्मुल नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत जो जश्न मल्हायो पियो वञे। ॾींहं जी शुरूआत वफ़ाक़ी राजधानी में 31 तोपन ऐं सूबन में 21 तोपन जी सलामीअ सां कई वई। मस्जिदनि में ख़ुसूसी दुआउनि जो इहतमाम, मुल्की तरक़ी ऐं खुशहालीअ लाइ ख़ासि दुआऊं घुरियूं वयूं। नंढनि वॾनि शहरनि में मिनी जाननि जे सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां मोहबत ऐं अक़ीदत जो इज़हार। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, लाड़काणो, सखर ऐं शहीद बेनज़ीराबाद डिवीज़न जे नंढनि वॾनि शहरनि में रैलियूं। हर तरफ़ नातनि ऐं दुरूदनि जी बहार। कराची में निकितल रैलीअ में वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह ऐं वज़ीरनि जी बि शिरकत।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 0300-33-85569।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप, कोटली कबीर रोड, मेहरापुर, कराची ए इस्लामाबाद जो मशहूर। डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ए फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह। हर अरबा, खमीस, जुमे, छंछर, आचर ए सूमर ते सुबह 10 का शाम 5 वगे तीन मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। हर जुमे, छंछर ए आचर ते बगैर फीस जे चेकअप कयो वेंदो। याद रखंदा मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी। माहिर अमराज, नक, कन, गलो, पुरानो नज़लो, निछो, मथे जो सूर, नजर जी कमजोरी, कन जो वहण, कन जो सूर, घट बुधण में अचण, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल जा मर्ज, फालिज, खंघ, टीबी, मादे जी अल्सर, मादे जी जलन, दिली जो वधण, जिगर जा मर्ज, हेपेटाइटिस बी सी, गुर्दे जी पथरी, मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो। गुर्दन जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सांवरो, चेहरे की खारिश, फट, फुरड़ियों, बारन में कद जो न वधण, मर्दन ए औरतुन में वजन जो न वधण, उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राबते लाए 0301-2196-851।
0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने, मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 0300-33-85569।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GFM 94।
2: I love Islam and Islamic record label.

ॿारनि जे फौत थियण जी तस्दीक करे छॾी। इस्पताल इंतिज़ामिया मौजूदु वार्ड में 16 ॿार दाख़िल हुया। हिकु ॿार खे बचायो वियो। साने में फौत थियल 14 ॿारनि जा मर सुञाण बाद वारसनि हवाले कया विया। सड़ी फौत थियल ॿारनि जे वारसनि जा इंतिज़ामिया ते संगीन इल्ज़ाम। वारसनि मौजूदु बाहि लॻी हा त अमलो बि ज़ख़्मी थिए हा। बाहि वक़्त अमलो ॿारनि खे ॿाहिरि कढण बदिरां पाण भॼी वियो हो। टिम साने बाद वज़ीर आज़म जी सदारत हेठि आला सतही इजलास। लाॻापियल अफ़सरनि ते सख़्त कावड़ जो इज़हार। सिहत वारे वफ़ाक़ी सेक्रेटरी असलम घोरीअ खे उहिदे तां हटाए छॾियो। साने जी जाच लाइ आला सतही कमेटी बि क़ाइम। अॻूणो सेक्रेटरी शाहिद खाकान कमेटी जो सरबराह हूंदो। वाके जी शफ़ाफ़ जाच करे ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई जी हिदायत। फोती ॿारनि जे वारसनि सां हमदर्दी ऐं डुख जो इज़हार। शहबाज़ शरीफ़ चयो आहे त नुक़सान जो अज़ालो नथो करे सघे। टिम्स में मुक़रर मयार मूजिबि बाहि वसाइण जा इंतिज़ाम न हुया। बाहि खां इंसानी जाननि खे बचाइण वारा इंतिज़ाम बि नाकाफ़ी हुया। शुरूआति में टिम्स अमले बाहि विसाइण लाइ पहुतल फायर ब्रिगेड अमले खे रोकण जी कोशिश कई। इस्लामाबाद फायर ब्रिगेड जी शुरूआती रिपोर्ट में टिम्स इस्पताल बाबति छिकाईंदड़ इंकशाफ़। फायर ब्रिगेड जी रिपोर्ट मूजिबि इस्पताल जे दरवाज़नि ते बि ताला लॻल हुआ। एमरजेंसी गेट बि मौजूदु न हुआ। बाहि विसाइण इंसानी जाननि खे बचाइण लाइ मुनासिब इंतिज़ाम न हुआ। इंसाने ते मुल्की सियासी क़यादत ॾुखारी। फोती ॿारनि जे वारसनि सां हमदर्दीअ जो इज़हार। सदर आसिफ ज़रदारी वफ़ाक़ी गुरु वज़ीर मोहसिन नक़वी वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह सीनियर वज़ीर शर्जी इनाम मेमण ऐं ॿियनि पारां साने ते ॾुख जो इज़हार। सदर आसिफ ज़रदारी चयो आहे त साने जे ज़िमेवारनि जो ताइन करे कार्रवाई कई वञे। सैद मुराद अली शाह चयो आहे त पंहिंजो साने जो अफ़सोस ऐं ॾुखाईंदड़ आहे। शर्जी इनाम मेमण चयो आहे त मुतासिरनि जे ॾुख में शरीक आहियूं। मोहसिन नक़वी चयो आहे त साने ते दिली सदमो रसियो आहे। टिम्स में बाहि सबबु 15 ॿारनि जो फौत थियण हादसो न आहे। सिहत वारो वफ़ाक़ी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल साने जी ज़िमेवारी क़बूल करे। सिंध हुकूमत जे तर्जुमान सादिया जावेद चयो आहे त हीउ संगीन गफ़लत ऐं इंतिज़ामी नाकामी जो मामिलो आहे। टिम्स वाके बाद अॻवाननि वफ़ाक़ी वज़ीरनि जे सिहत वारे वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल खां इस्तीफ़ा जो मुतालबो करे छॾियो। अॻोणे वफ़ाक़ी वज़ीर फवाद चौधरी चयो आहे त ज़िमेवारी क़बूल कंदे मुस्तफ़ा कमाल इस्तीफ़ा ॾे। शीरीन वज़ारी चयो आहे त मुस्तफ़ा कमाल साने जी ज़िमेवारी क़बूल करे।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 03003385569। खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ। बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने, मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 03003385569।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर।

पिमसाने ते समूरो मुल्क रोई रहियो आहे। सानिया रोकण लाइ एहतसाब ज़रूरी आहे। पिम सियासत करण न पर आवाम जा अहंज ॿुधण आया आहियूं। पीपल्स पार्टी जे सेनेटर शेरी रहमान चयो आहे त ज़िमेवार वज़ीर खे पाणी इस्तीफ़ा ॾियणु घुरिजे। फायर ब्रिगेड लाइ पिम्स जा दर बंदि हुआ, वाटर टैंक्स बि खाली हुआ, डॉक्टर्स बि मौजूदु न हुआ। आवाम तरफ़ां बि सवाल पुछंदासीं।

पिम्स थाने ते मुल्की सियासी क्यादत रुखारी, फौती ॿारनि जे वारसनि सां हमदर्दीअ जो इज़हार। सदर आसिफ ज़रदारी, वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी, वॾे वज़ीर मुराद अली शाह, सीनियर वज़ीर शर्जील मेमण ऐं ॿियनि पारां थाने ते ॾुख जो इज़हार। सदर आसिफ ज़रदारी चयो त थाने जे ज़िमेवारनि जो तइन करे कार्रवाई कई वञे। मुराद अली शाह जो चवणो हो त पिम्स थानो सुसनाक ऐं ॾुखाईंदड़ आहे। शर्जील मेमण चयो त मुतासिरनि जे ॾुख में शरीक आहियूं। मोहसिन नक़वी चयो त थाने ते दिली सदमो पहुतो आहे।

सिंध समेत सजी मुल्क में रहमतुल आलमीन खातम अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत जो जश्न मल्हायो पियो वञे। ॾींहं जी शुरुआत वफाकी राजधानी में 31 तौबनि ऐं सूबनि में 21 तौबनि जी सलामीअ सां कई वई। मस्जिदनि में बि ख़ासि दुआउनि जो इहतमाम, मुल्की तरक़ी ऐं खुशहालीअ लाइ ख़ासि दुआऊं घुरियूं वयूं। नंढनि वॾनि शहरनि में ॿिन्ही जहाननि जे सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां मुहबत ऐं अक़ीदत जो इज़हार। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, लाड़काणो, सखर ऐं शहीद बेनज़ीराबाद डिवीज़न जे नंढनि वॾनि शहरनि में रैलियूं। हर तरफ़ नातन ऐं दुरूदनि जी बहार। कराचीअ में निकितल रैलीअ में वॾे वज़ीर मुराद अली शाह ऐं ॿियनि वज़ीरनि जी शिरकत। हैदराबाद डिवीज़न में ईद मिलादुलनबीअ जूं रैलियूं ऐं मेड़ाका, दादू, जामशुरो, मटियारी, बदीन, ठठो, सजावल, टंडो मोहम्मद ख़ान ऐं टंडे अलिहार में रैलियूं। मातली, तलहार, सेवण, जोही, मेहड़, चंबड़, चूहड़, जमाली, सईदाबाद, बुलड़ी, शाहकरीम ऐं ॿियनि शहरनि में मेड़ाका। मुख़्तलिफ़ शहरनि में रैलियूं कढी मेलाद कराया विया। मरहबा या मुस्तफ़ा जा नारा।

सखर ऐं लाड़काने डिवीज़न में ईद मिलादुल नबी सलाहु वसलम जे सिलसिले में रैलियूं, हर तरफ़ नातन ऐं दुरूद जो विर्द। घोटकी, खैरपुर, शिकारपुर, जेकबाबाद, कंबर शादात कोट ऐं कश्मोर ऐं कंदकोट में रैलियूं कढियूं वयूं। रोहड़ी, सालेहपट, पनो, आकिल, डहरकी, उबावड़ो, कोटरीजी, गंबट, किंगरी ऐं सोभे देरे में बि रैलियूं। डोकरी, रतोदेरो, वारह, गढ़ी यासीन, तंगवाणी, गढ़ी खैरो, मीरो खान ऐं ॿियनि शहरनि में बि रैलियूं कढियूं वयूं। शहरनि रैलियूं कढी मेलाद जूं महफ़िलूं मुनक़िद कयूं।

0: मीरपुर खास ऐं शहीद बेनज़ीर आबाद डिवीज़न में 12 रबीउल अव्वल जा प्रोग्राम, मिलाद जूं महफ़िलूं, उमरकोट, थरपारकर, सांगड़, नौशहरो, फिरोज़, सकरण, मोरो, ठारू शाह, कंडियारो ऐं काज़ी अहमद में रैलियूं कढियूं वयूं। जोॾो, डिगड़ी, इस्लामकोट, नगर पारकर, कुंडरी, सामारो ऐं ॿियनि शहरनि में बि रैलियूं कढियूं वयूं।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नताइज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राब्ते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 0300-00-27234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-386-5453।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि।
3: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालाणी।
4: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372-0242-460100।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा।
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेहरापुर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेहरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
6: राब्ते लाए हाकिम अली जिसकानी
7: 0301-399-2836
3: आई मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1550-724।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: FM Network आप सबको ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल से मुबारकबाद पेश करता है। दिल को सुकून देने वाली नातें, रोशनियों की बहार और इश्के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंग, सब कुछ सुने सिर्फ जीए FM पर। आए मोहब्बत, अकीदत और अखवत का पैगाम आम करें, क्योंकि यही है जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनिए, खुशियां बांटिए और पैगाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे बढ़ाइए जीए FM नेटवर्क पर।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 0300-33-85569।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर।

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चुपर एटमाद आई मा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ते जिलाई आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120
3: अदा
4: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
3: मुझे दुकान जी बेड हरंदी
4: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
6: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GA FM 94

0: GAFM Network आप सबको ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल से मुबारकबाद पेश करता है। दिल को सुकून देने वाली नातें, रोशनियों की बहार और इश्के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंग, सब कुछ सुने सिर्फ GAFM पर। आए मोहब्बत, अकीदत और अखवत का पैगाम आम करें, क्योंकि यही है जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनिए, खुशियां बांटिए और पैगाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे बढ़ाइए GAFM नेटवर्क पर।
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: पिम्सान इत समूर मुल्क रोई रो है, सान्या रोकण का एहतसाब जरूरी है। पिम्स सियासत कर न पर अवाम जहंज बुध आया आयु। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शेरी रहमान चया है तो जिम्मेवार वजीर के पानी इस्तीफा दियण घुर्जे। फायर ब्रिगेड लाए पिम्स जहा दर बंद हुआ, वाटर टैंक्स भी खाली हुआ, डॉक्टर्स भी मौजूद न हुआ। अवाम तरफा भी सवाल पुछंदी। सान्यो किन पेश आयो, पिम्स अस्पताल की इंतजामिया शुरुआती रिपोर्ट तैयार करे वरती। रिपोर्ट में चयो वियो आहे त NICU में इनक्यूबेटर सा गड ऑक्सीजन वारो नेबोलाइजर फाटो। नेबोलाइजर फाटन सबब ऑक्सीजन सब बाह पकड़ी, ऑक्सीजन बंद थियण ए सड़न सबब बारन जो मौत थियो आहे। इस्लामाबाद की फायर ब्रिगेड पिम्स में बाह विसारण वाले इंतजाम के नाकाफी करार दे छो, बाह का बचाव वाले इंतजाम से भी सवाल उथारे छा। इस्लामाबाद फायर ब्रिगेड की शुरुआती रिपोर्ट में पिम्स अस्पताल बाबत छिड़काइंद इंकशाफ सामू आया। रिपोर्ट मूजिब अस्पताल के दरवाजन से भी ताला लगल हुआ, इमरजेंसी गेट भी मौजूद न हुआ।

हैदराबाद डिवीजन में ईद मिलादुलनबी जो रैलियों ए मेड़ा का दादू जामशुरो मटियारी बदीन ठठो सजावल टंड मोहम्मद खान ए टंडे अलियार में रैलियों कढ़ी वयूं। मातली तलहार सेवण जोही मेहड़ चंबड़ चूहड़ जमाली सईदाबाद बुरड़ी शाह करीम ए बेन शहर में मेड़ा का मुख्तलिफ शहर में रैलियों कढ़ी मेलाद कराया वया मरहबा या मुस्तफ़ा जहा नारा हया वया। सखर ए लारकाने डिवीजन में भी ईद मिलादुलनबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में रैलियों कढ़ी वयूं। हर तरफ नातन दरूद जो विर्द। कोटकी खैरपुर शिकारपुर जैकबाबाद कंबर शादात कोट ए कश्मोर ए कंदकोट में रैलियों कढ़ी वयूं। रोड़ी सालेपट पनवाकिल डहरकी उबावड़ो कोट डिजी गंबट किंगरी ए सूबेदेरे में भी रैलियों। डोकरी रतोदेरो वारह गढ़ी यासीन तंगवाणी गढ़ी खैरो मीरो खान ए बेन शहर में भी रैलियों कढ़ी वयूं।

फिलहाल अमेरिका ईरान ते वधीक हमला न कंदो, अमेरिकी परदेही वज़ीर इतिहादी मुल्कन खे आगाह करे छॾियो। अमेरिकी मीडिया मूजिबि मार्को रूबियो इतिहादी मुल्कन जे हम मनसबनि खे फोन ते आगाह कयो त अमेरिका ईरान ते हमलनि खे पाबंदियुनि ॾांहुं मुंतकिल करे रहियो आहे। ईरान ते वधीक हमलनि जो इम्कान आहे। ओमान सां आबनह हुर्मज़ में वक़्ती रस्ते ते तफ़ाक़ जो मक़सदु आबनह हुर्मज़ जो खोलणु नाहे। अमरीका आबनह हुर्मज़ मां बारूदी सुरंगूं हटायूं आहिनि त जहाज़ गुज़ारे ॾेखारे। ईरानी परॾेही वज़ीर काज़िम ग़रीब आबादी चयो आहे त आबनह हुर्मज़ बाबति अमरीकी दावाऊं कूड़ियूं आहिनि। ओमान सां मुआदे जो मक़सदु बि आबनह हुर्मज़ जो खुलणु न हूंदो।

0: मलीर जे इलाके शालतीफ टाउन में फुर मज़ामत नौजवान कतल। पुलिस जो चवण है हथियारबंदन फुर मज़ामत अड़न वरन के हामिद के गोलियों हणी कतल कयो। लाश अस्पताल मुंतकिल कयो वयो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GAFM 88 नेटवर्क ते।
3: मेरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया गार्डर टीए एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई।
3: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
4: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372
5: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 03201800003।
6: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेहरापुर अस जगह जो डारू जगह जा पावा पाइप डेढ़ ब चार छह नव बारह इंच में प्लेन कॉलम में मौजूद आहिन। फौजी भाइरन लाइ खुसूसी रियायत होंगी। राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 03014514456 तौकीर अहमद 03616237।
7: अस्सलाम वालेकुम अदा।
8: वालेकुम अस्सलाम अदा। छो परेशान आई
7: अदा? नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
8: अदा? दुकान जी मशहूरी कराई थई
7: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
7: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
8: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
7: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
8: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
9: 03013992836।
10: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो GAFM 94।

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Asi hum samkhatiban hain ji Mehrapur FM 94 ka. Program sehat ki baat shan kare hazir khidmat awan jo panjo mezban Hakim Ali Jiskan. Program sehat ki gal mein asan jo studio mein maujood hun aan sinja mashhoor aur maroof Dr. Manzoor Hussain Memon sahab je ki asan jo studio mein awan ke sehat babat malumat deenda aahin. ایک ملکی سطح جو ایک وڈو ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب ان جو خاص مہربانی آہن محبت آہن محبت آہن جو وہ پنجو قیمتی وقت کڑی کرے اساں جے اسٹوڈیو میں اچے تو ڈاکٹر صاحب ہر اربا خمیس جمعے چھنچر آچر ائی سومر تے صبح 10 کھا شام 5 وگے تائیں جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودھن پوٹرا پیٹرول پمپ کوٹڑی محمد کبیر روڈ مہراپور میں مریضن جو علاج کندا آہن ڈاکٹر صاحب جو نمبر بھی آپ نوٹ کرائی ہمیں اصا یہ آپ ضرور چوندے جی واہے تو جہان واہے صحت واہے تو سب کچھ ہے بیٹھے جو سب کو کرے جو کیر بھی نہ ہے اڑی خطرناک بیماریوں اصا وٹ اڑا بھی پیشنٹ اصا پان دھا اصا وٹ اندا بھی جن پوزیشن ہوں جن کے پینی اولاد بھی چھڑے ویندی ہے خاص طور پہ جے ادھرنگی والا جے مریض ہوں ادھرنگی جا پیشنٹ ہوں ایک جگہ پہ ویہ جی ون تھا تو ان کے لیے انتہائی زندگی گزارن مشکل بن جی ویندی ہے وہ ایک مشکل ترین زندگی جا ڈی گزاریندا آہن تنہے کرے پنجے صحت جو خیال رکھن گرجے جی واہے تو جہان واہے تندرستی ہزار نعمت ہے ان میں کو بھی وداؤ نہ ہے ان میں کو بھی شک نہ ہے تین کر انسان کے پینو خیال رکھن گرجے پینے صحت جو خیال رکھن گرجے یعنی اواں کم کار کرو پر ایترو کرو جو اواں جی صحت ترجیح ہون گرجے جی اواں ٹھیک آو فٹ آو پینو کھان پین یعنی اصا ہمیشہ یہ دعا گھرندا آہوں یا اللہ سائیں اساں کے کہیں جی محتاجی نہ دکھا کہ صرف ان کے لیے گھرندا آہوں جدید انسان بیمار پی وے تو بے جو ڈسو محتاج تھی وے تو مثال طور کن ادرنگو تھے تو وہ ایک بے جو محتاج تھی وے تو ایون گھر میں پیو پٹ جو من محتاج ایکڑو تھی وے تو ان جو کھائن ہے پیئن ہے ان کے اٹھار وہار واشروم تھی وٹھی ون ایک جو ادرنگے جو مریض ہوں ان کے لیے بے انتہا تکلیف کا ہے اڑی طرح جی کا عورت ہے لیڈیز ہے ایون وہ گھر کی امڑ ہے وڈی ہے ان کے فالج تھے تو ان کی بھلی دھی ہوجیس بھلی ن ہوجیس یا بیو کو رشتہ ہوجیس بھائٹری ہوجیس بھانے کی ہوجیس بھن ہوجیس پہ شروعاتی ڈیئن میں 15 ڈی 8 ڈی کیتری بھی کیئر کن خیال کن پر اگتے ہلی کرے اوہے ہی ساگیا بیزار تھی ونن تھا ایک بیمار مانو میں سب مانو بیزار تھی ویندا ہیں چوجو وہ ایک جگہ تے پیجی ویندو ہے وہ اپاہ تھی ونے تو 24 کلاک صرف ایک ہی جگہ تے موجود ہے ان جو کھارائن ہے پیارن ہے یعنی وہ ننڈے بار کھان بھی ودھیک ننڈو بار کھانن میں ان میں آسان ہوں ماں ان کی خدمت کرے تھی ان کے پالے کرے وڈو کرے پر جی ان وڈو ہوں تو وہ انسان کے لیے مشکل بن جی ویندو ہے جی مجھے تو ان کے واش روم تھی وٹھی ون ان کے فریش کرائن تین کرے انسان کے پینے صحت جو بے انتہا خیال رکھن گرجے تین کرے جی واہے تو جہان واہے جی خوش جہان خوش تا خوش آ دنیا اواں کے مقصد جی ہے اواں کے ٹھیک لگندی ڈاکٹر صاحب جو خاص مہربانی پنجو قیمتی وقت کڑی نہ اساں جے اسٹوڈیو میں اچھی کرے اساں جا جی ایف ایم جا جے بدھندڑ آہن موزز بدھندڑ آہن اساں جے لئے نہایت قابل احترام آہن انہاں جے لئے ڈاکٹر صاحب اچھی کرے مشورو دیندا آہن صحت بابت جان دیندا آہن اواں کے یہ بدھائیندی ڈاکٹر صاحب ہر جمعے چھنچر آچر تے یعنی جی ہفتے جا ٹے ڈی بغیر چیک اپ فیس فلاحی طور یعنی چیک اپ فیس ڈاکٹر کی فری ہوں مفت ہوں اواں ڈاکٹر صاحب کے ڈیکھارے سکو تھا اربا کا وٹھی کرے ہر سومر تین یعنی ہفتے جا 6 ڈی اربا خمیس جمعہ چھنچر آچر سومر یعنی ہفتے جا 6 ڈی باقی انگارے والے ڈی ڈاکٹر صاحب کی کلینک بند ہوں صبح 10 کا شام 5 وگے تین جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودھن پوترا پیٹرول پمپ کوٹڑی کبیر روڈ مہراپور لائیو کال جو نمبر تھی نوٹ کرائی ہلوں تھا 0301-9698-051-2196-851 ڈاکٹر صاحب مختلف بیماری جا ماہر ڈاکٹر ہیں ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ فیملی فزیشن ڈاکٹر صاحب جو 30 سال تجربہ ہے 30 साल एक जिंदगी आहे इंसान जी अध साल जी इंसान जी एवरेज जिंदगी 60 साल आहे असान जे पाकिस्तान में त अड़ी तरह यानी अध जिंदगी जो डॉक्टर साहब जो तजुर्बो है डॉक्टर साहब जो एतरो एडो तजुर्बो है इंसान जी अध जिंदगी एतरो डॉक्टर साहब जो तजुर्बो है और डॉक्टर साहब के देखारे सको था होम्योपैथिक कंसल्टेंट और फैमिली फिजिशियन डॉक्टर साहब जो माहिर है गुर्दे पेते मसान की पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कन था अवं के कड़ो भी पुरानो संधन जो सूर हो जोड़न जो सूर गोडन जो सूर हो नक या कन या गले जो पुरानो नज़लो है निछू मथे जो सूर अवं के अध मथे जो सूर उन सभी बीमारियों को डॉक्टर साहब कामयाब इलाज करे तो नज़र की कमजोरी आ कन जो वहन कन जो सूर घट बुधण में अचान शुगर ब्लड प्रेशर दिल जहा मर्ज फालिज है जो अधरंग जिक्र कर खंघ है टीबी मादे जो सूर मादे की अल्सर त्री जो बधन जिगर हेपेटाइटिस बी सी गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरों चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बार में कद जो न बधन औरतों ने मर्दन के पोशीदा बीमारियों को डॉक्टर साहब कामयाब इलाज कंदा सब का पे असा डॉक्टर साहब की खुश हम भी चवंदी अभी ज्यादा अड़ो टाइम वीसें इंट्रो में जो दोस्त कॉल कंदा उन्होंने अस पंज मिनट सिर्फ माजरत खा आयो बाद में उन्होंने कॉल अटेंड कंदी जो डॉक्टर साहब के असा पे खुश हम भी चौं डॉक्टर साहब अज कड़े मौजूद बाबत जानींदा साई असलम
0: डॉक्टर
1: साहब ठीक है तबियत ठीक है
0: अज
1: कड़े मौजूद बाबत जानींदा असाजे मौजूद बुधने
0: रहीम सल वसलम पैरा त तारीफ़ उन रब पाकचू जो असारे तो खाराए तो रोज़ी दिए तो खुशी दिए तो सभी ज़मीनी आसमानी आफतों का महफूज रखे तो असि क्लिनिक जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक खबर है त मेहरापुर शहर में हफ्ते जहाँ छह ढी जुमे जो ढी छंछर जो ढी आचर जो ढी जो अस चेकअप फीस फ्री रखल हों उन सूमर जो ढी अंगारे जो ढी क्लिनिक बंद रही है अरबा ए खमीस अवे जे शहर मेहरापुर में कोटड़ी रोड सामू वधण पोटरा पेट्रोल पंप के सामू मौजूद होंगी है टाइमिंग असि सुबह जो 10 बजे का शाम जो 5 बजे तीन बजे टे ढी जो असा चेकअप फीस फ्री रखना जुमे जो ढी छंछर जो ढी आचर जो ढी वो असो खसूसी पैकेज हों जो बेपोह हजरात हूँ गरीब हजरात हूँ उन्होंने लाइन अड़े तरीके से असि क्लिनिक जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक जी प्रोग्राम उन हवाले से क्यों सेहत की गाल उन में जो सो मौजू जो सेहत के उनवान से हों अस अवेयरनेस के हवाले से पेशेंट्स तक नॉलेज पहुँचाई तो कड़ी भी बीमारी है उन बारे में अवं तीन जल्दी जल्दी जो है जान हो जी तल्द अज जल्द उन बीमारी है तो उन रोकथाम के लिए तक कदम खी सको अड़े तरीके से या अस हाईलाइट क्यों उन मर्जन के उन बीमारियों के उन बीमारियों के मौजूद चवे उन हवाले से जी रोजमर्रा के हवाले से अस क्लिनिक से ज्यादा जो पेशेंट्स इंदा खास कर कॉन्स्टिपेशन के हवाले से गाल क्यों यानी कब्ज़ के हवाले से गाल क्यों तो कब्ज़ अवं खबर है तो केतरी जो है सो मरीज के लिए नुकसानकार होंगी है खतरनाक होंगी है कॉन्स्टिपेशन जैसे अस कब्ज़ चवंदा कब्ज़ एक्चुअली दिखो वे तो सभी बीमारियों की माँ कुछ वो है अरे सभी बीमारियों की माँ उनके छो कुछ वो है ज़ाहिर है जैसे कब्ज़ थी है तो हर शे अंदर बंदिश थी अवं मादो जो है सो बंद वो है जैसे मादो बंद थी वो है तो का भी शो अवं पेटू न हल्दी है उनखा अलावा उन बू तकलीफू खोड़ सारियों को जन्म वन स्ट्रेस अवं अची वी है यानी चिड़चिड़ियोंपन अची वो है परेशानी टेंशन वो है अवं निंड जो खत्म थी है जी चिड़चिड़ेपन की गाल कई या एंजाइटी थी वी है उनके अवं निंड नी है मू जैं बवासीर है जैसे कब्ज है तो जोर लगाए बवासीर के पाखाने के अचण के लिए कोशिश कह लेकिन उनके इन्फेक्शन थी पवन है बवासीर जो है उन घणन मरीजन के थी वो है एक्चुअली यो जो है जो जो अस आंडर हूँ वे आंडर की गाल क्यों जी वे आंडर की गाल क्यों तो उनमें जैसे खुश्की पैदा थी वही है जैसे करो असो असें खुश्की सो कब्ज़ की शिकायत रही है वह खुश्की इन कर पैदा थी है जो अस पानी जो है सो घट पीता पानी जो सो इस्तेमाल घट है या जे असा खाधन के हवाले से गाल क्यों तो जे फल फ्रूट वग़ैरह इस्तेमालु कंदा आहियूं न कंदा आहियूं या जेके मुर्गनि ग़िज़ाऊं इस्तेमालु कंदा आहियूं सब्जियूं इस्तेमालु नथा कयूं सब्जियूं इस्तेमालु करण सां जेको असांजी इहा शिकायत दूरि थी सघे थी पाणी ज़्यादा इस्तेमालु करण सां इहा शिकायत ख़तमु थी सघे थी फल फ्रूट इस्तेमालु करण सां इहा शिकायत ख़तमु थी सघे थी अहिड़े तरीक़े सां जेको आहे सो जेकॾहिं हिकिड़ी कुदरती शयुनि जी ॻाल्हि कयूं त जेकॾहिं कंहिंखे कब्ज़ थी वञे थो अंजीर अंजीर हिकिड़ो मादे जे लाइ तमामु अक्सीर आहे अंजीर जेको आहे कब्ज़ जे लाइ तमामु बहितरीन आहे टे दाणा सिर्फ़ु रोज़ानो राति जो जेकॾहिं पाणी में पिसाए रखंदो सुबुह जो नेराणे जेको सो खाई उहो पाणी पीतो तव्हांजे न सिर्फ़ु कब्ज़ जे हवाले सां बल्कि मैदे में जेकी बि तकलीफ़ आहिनि या इवन बवासीर में बि जेको आहे सो अंजीर अव्हांखे फ़ाइदो ॾिए थो इन जे करे ऐं जेकॾहिं कंहिंखे इमरजेंसी आहे कंहिंखे राति जे टाइम में फ़िलहालु जेकॾहिं कब्ज़ घणो आहे डॉक्टर ताईं नथो पहुची सघे तव्हांजे जेको आहे सो हथ में अरंडी जेके असां किस्ट ऑयल चवंदा आहियूं उहा बआसानी मिली वेंदी आहे उहा इस्तेमालु करे सघो था सिर्फ़ु राति जे टाइम में चारि चमचा जेको आहे सो खीर में विझी नीम गरम खीर में विझी इस्तेमालु करण सां अव्हांजी कब्ज़ टुटी सघे थी अव्हांखे काफ़ी सारो फ़ाइदो पइजी सघे थो जेकॾहिं उहा अवेलेबल न आहे त स्पंगुर जी दुही रोज़ाना राति जो नीम गरम खीर में ॿ चमचा विझी ऐं उहा इस्तेमालु कयो उन सां अव्हांखे फ़र्क़ु पइजी सघे थो लेकिन रोज़मर्रा जी रूटीन में जेकॾहिं अव्हां सौंफ जो अर्क इस्तेमालु कंदो त इन सां अव्हांजो मादो बि ठीकु ठाकु रहंदो मैदे ते सोज़िश जेकी आहे उहा ख़तमु थी वेंदी ऐं उनखां अलावा ख़ुश्की बि ख़तमु थी वेंदी ऐं अव्हांजी कब्ज़ बि जेको आहे सो ख़तमु थी वेंदी ऐं हू बि नेराणे जेको आहे सो असांखे टे चारि गिलास पाणी जा ज़रूरु जेको आहे सो पीअणा आहिनि निंड पंहिंजी टाइम ते किरणी आहे पाणी जेकॾहिं नीम गरम आहे अञा वधीक जेको आहे सो अव्हांखे फ़ाइदो पवंदो छो जो इहे हिकिड़ियूं नंढियूं नंढियूं ॻाल्हियूं आहिनि जेके असां खे ॿियो न ॿुधाईंदो आहे हिन प्रोग्राम जी तवसुस सां सिहत जी ॻाल्हि जेकी FM 94 मेहरापुर में जेको आहे सो मौजूदु आहे उन जी तवसुस सां असां पंहिंजे सामाइन ताईं ॿुधणनि ताईं इहे जेको असां ॼाण पहुचाईंदा आहियूं ऐं अलहमदिल्ला इहा ॼाण ॿुधी खोड़ सारा दोस्त असांजा मुस्तफ़ीद थींदा आहिनि ऐं असांखे तमामु घणी ख़ुशी तॾहिं थींदी आहे जॾहिं असांखे फीडबैक मिलंदो आहे तव्हां जी असां इहे ॿुधायल शइ इस्तेमालु कईसीं ऐं असांखे हिन मां काफ़ी सारो लाभ हासिलु थियो आहे सो अहिड़े तरीक़े सां अॼोको प्रोग्राम बि इन ई हवाले सां हुयो त अव्हांखे हीअ शयूं ॿुधाइण जो मक़सदु इहो ई आहे त तव्हां हीअ शयूं ॿुधी करे ऐं दवाउनि जे तरफ़ घटि वञो ऐं कुदरती शयुनि जे तरफ़ ज़्यादा अचो होम्योपैथिक जी दवाउनि में बि कुदरती शयूं पियल हूंदियूं आहिनि इन जे करे अव्हांखे असां होम्योपैथिक जो ॾिसी ॾींदा आहियूं त होम्योपैथिक दवा जो को बि साइड इफ़ेक्ट कोन्हे को वॾी महिरबानी
1: तमामु घणी महिरबानी डॉक्टर साहब मां तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि जीअं मेरा FM 94 जे स्टूडियो मां अवां ताईं पहुचाए पियो वञे उनजो पंहिंजो मेज़बान हाकिम अली जिस्कियाणी अवां सां गॾु आशी डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन साहबु असांजे स्टूडियो में मौजूदु सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज ऐं इस्पताल नवाब शाह डॉक्टर साहिबु सिंध जो मशहूरु मारूफ़ डॉक्टर हिकु मुल्की सतह डॉक्टर बल्कि पाकिस्तान जो वॾो डॉक्टर असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहे डॉक्टर साहिब जी ख़ासि महिरबानियूं आहिनि मोहबतूं आहिनि जो पंहिंजो क़ीमती वक़्तु कढी करे असांजे स्टूडियो में अचनि था काल जी तरफ़ ईंदासीं अस्सलामु अलैकुम अच्छा पेट में सूर थो माना जेको खाए थो कॾहिं थो करे मादे जी अल्सर हूंदी या अहिड़ी जेको खाए थो उल्टी कंदो हूंदो रत जी उल्टी त कान थी अचे न बाक़ी खाली माना उल्टी थी अचे अगरि खाधो नथो वणे मादे जो मसालो अथसि डॉक्टर साहिबु इलाजु मौजूदु आहे तव्हां भले सुभाणे ई हिनखे वठी अचो को मसालो कोन्हे को अलाह सिंधी ज़ात शिफ़ा ॾियण वारी आहे रूबरू ॾेखारे वञो प्रॉपर इलाजु कराईंदो इनशाला सही थी वेंदो को मसालो ई कोन्हे को वधीक असां ॿुधो डॉक्टर साहिबु तव्हांखे ॿुधाईंदो जी सर
0: जी साईं बिल्कुलु दोस्त खे ॿुधाईंदासीं त अॼु मां पहिरीं ॻाल्हि करियमि त अर्के सौंफ़ जेके अर्क सौंफ़ आहिनि उहे ऐं जीरो अधु चमची राति जो पाणी में पिसाए रखो सुबुह जो नेराणे उहो काढ़े उहो पाणी पीआरे इनशाला ताला उन सां जेके बि पेट जा अमराज़ आहिनि ख़तमु थी वेंदा आहिनि या पेपरमिंट शरबत मिलंदो आहे अवां उहो वठी बआसानी पीआरे सघो था फूदने जी टिकियूं चूसराए सघो था काफ़ी फ़र्क़ु पइजी वेंदा इन जेकॾहिं इहे तव्हां इस्तेमालु नथा कराए सघो त रूबरू क्लिनिक ते ॾेखारियो अव्हांखे इनशा ताला नंढे खे मुकमल तरीक़े सां ट्रीटमेंट ॾींदासीं इनशा ताला नंढो ठीकु थी वेंदो जी साईं
1: प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि जी मेरा FM 94 जो आवाज़ु तव्हांजी समातुनि ताईं पहुचे पियो पंहिंजो मेज़बान हाकिम अली जिस्कानी अवां सां गॾु आहे। असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहिनि सिंध जा मशहूरु मरूफ़ डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन साहबु। डॉक्टर साहिब जूं ख़ासि महिरबानियूं आहिनि, तव्हां असांजे प्रोग्राम में बज़रिया लाइव कॉल शामिलु थी सघो था। 0301 96 8051 प्रोग्राम में कॉल जी तरफ़ ईंदासीं, ॾिसूं किथां जो कॉलर असां सां गॾु हूंदो। काफ़ी दोस्तनि जूं कॉलूं अचनि पियूं, सभिनी खे ख़ुशि आमदी चऊं था पंहिंजे प्रोग्राम में। अस्सलामु अलैकुम।
0: करीबी डॉक्टर खे ॾेखारे सघो था, वरना रूबरू ॾेखारे वञे त वधीक बहितर रहंदो आहे। या लौंग जो तेल तव्हांखे मिली वञे त उहो जेको असां लॻाए सघो था, उन सां काफ़ी फ़र्क़ु पवंदो। या घर में मिठी सोडा हूंदी आहे उहा लॻायो, इनशाला ताला उन सां बि काफ़ी फ़र्क़ु
1: पवंदो। ॿियो कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे, अस्सलाम वालेकुम। जी दादा, केरु ॻाल्हाए पियो? केरु साहिब पियो ॻाल्हाए? सर साहिबु पियो ॻाल्हाए। सर साहिबु, साहिबु इहो छा पुछंदे डॉक्टर साहिब खां? जिस्म में कमज़ोरी इन मसले जे लाइ फ़ोन कई। इलाज मौजूदु हलियो आहे डॉक्टर वटि, को मसलो ई कोन्हे को। एफ एम ॿुधो, डॉक्टर ॿुधाईंदी। जी सर, ॿुधो एफ एम ॿुधो।
0: साईं बिल्कुलु रूबरू हुजे, इनशा हुनजी ट्रीटमेंट आहे।
1: सुभाणे सिहत जी ॻाल्हि थी, मेरा पर एफ एम 94 जो आवाज़ु तव्हांजे समात में पहुचे पियो। 0301 96 8051 हिकु ॿियो कॉलर लाइन ते मौजूदु, ॾिसो किथां जो कॉलर गॾु हूंदो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साईं, मुंहिंजा केरु था पियो ॻाल्हाए? ख़ुशि आमदी चऊं था बुर्दी साहिब खे। छा पुछंदा डॉक्टर साहिब खां मुंहिंजा भाउ? वार छणी था वञनि, दिमाग़ जी कमज़ोरी
2: आहे।
1: ठीकु आहे, घणी उमिरि
2: आहे?
1: अच्छा, को मसइलो ई कोन्हे को। ॿुधो एफ एम ॿुधो, डॉक्टर साहिबु तव्हांखे ॿुधाईंदो।
0: जी, प्रॉपर ट्रीटमेंट मौजूदु आहे। अधे खे चवंदासीं रूबरू ॾेखारनि, वरना 7 बादाम रोज़ाना राति जो पाणी में पिसाए रखनि, सुबुह जो नेराणे खाइनि, इनशा ताला काफ़ी फ़र्क़ु पए।
1: थी वक़्तु आहे कमर्शियल ब्रेक जो, पहिरियां हलूं था कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़।
3: लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
4: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद, आई बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स। एड्रेस इंडस बाईपास नज़्द रेलवे लाइन मेहरापुर, राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई, 0307-35-92120।

खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।

0: जी दादा।
1: तो इन्हें वो इलाज से करायो पर फिलहाल वो छड़े कौन सा ना
0: अगर छड़े न तो ना लो डॉक्टर साहब को नहीं आओ ना डॉक्टर मंजू साहब तो चो ना वती जो ना कर दो हां
1: से एक बच्चे कराए साईं वाली जनवट जो को तो फिलहाल छड़े तो वने वरी तो हफ्ते दे दे को वरी तो यो सही
0: वो कंप्लीट बीमारी छड़े ही कौन होंदो स्किन जो बीमारी बीमारी होंदी ही है स्किन वाली कंप्लीट छड़े मुकमल छड़े वने को ना मात करो अद छड़े दी दवा वठी आउंदो थोड़ो फर्क के होंदो ता दवा बंद करे छड़ी होंदी
2: बिल्कुल सही पे चोसी बिल्कुल ईअं थींदो आहे असां हालांकि पेशंट्स खे चवंदा आहियूं त बाबा हीअ हिकु दफ़ो दवा ॾिनी आहे हीअ कांग्रेस जी दवा न आहे जो तव्हांखे जेको आहे सो फ़िलहालु छॾे वञे वरी वरी पई थिए हिन खे जेकॾहिं तव्हां मुकमल तरीक़े सां इस्तेमालु कंदव त तव्हांजी तकलीफ़ मां जल्द छुटी वेंदी आहे अॼु बि हिकिड़ो ताज़ा मिसाल आहे त हिकिड़ो पेशंट हुयो जेके 1.5 साल खां बाद में मूं वटि आयो नंढी खे वठी आयो त अलहमदिल्ला हिकिड़ी शिफ़ा जी ॻाल्हि आहे त हुनखे त जेको आहे सो हिकिड़ी चकर सां फ़र्क़ु जो पइजी वियो त उहो वीचारो मज़दूरी कंदो आहे कराची वेंदो आहे पर नंढड़ी खे वरी अॼु वठी आयो त हुनखे हाणे एतिरे टाइम खां बाद में वरी मथे में जेको आहे सो मलो सो बहरहाल चवण जो मक़सदु इहो हूंदो आहे त अहिड़े क़िस्म जी जेकी पेशंट कहिड़ो बि हुजे उनखे तकरीबन जेको असां चवंदा आहियूं त 2-3 महीना मुकमल कोर्स करायो त उनजो मक़सदु इहो ई हूंदो आहे त फ़िलहालु 10 ॾींहनि जी दवा ॾींदा आहियूं त हुनखे मुकमल तरीक़े सां ॿियनि त घटि में घटि एटलीस्ट 1 महीनो दवा कंटिन्यू हलाए त उनखे काफ़ी जेको आहे सो
0: फ़र्क़ु
2: छोजो हीअ सिर्फ़ु चमड़ी में ॿाहिरि न हूंदी आहे रत जो बिगाड़ हूंदो आहे रत में अंदरि सफ़ाई करणी हूंदी आहे त उनजी दवा मुकमल जॾहिं हलंदी तॾहिं ई फ़र्क़ु थींदो आहे जी साईं
0: हिकु ॿियो कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे कॉल जी तरफ़ ईंदासीं पंहिंजो मेज़बान हाकिम अली जिस्कानी सां गॾु आहे तव्हांखे ॿुधाईंदा हलंदो हमेशह असीं इहा गुज़ारिश कंदा आहियूं जॾहिं बि तव्हां कॉल करियो त रेडियो सेट खे बंदि रखो जेकॾहिं तव्हां पंहिंजो आवाज़ु पाण ॿुधणु चाहींदो त पोइ तव्हांजो आवाज़ु असां वटि त कोन ईंदो मजबूर असांखे इहा कॉल ड्रॉप करणी पवंदी या ख़ुदि ई कटिजी वेंदी कॉल जी तरफ़ ईंदासीं ॾिसूं हीअ कॉलर किथां जो असां सां गॾु हूंदो अस्सलाम वालेकुम साईं मुंहिंजा केरु छा थो ॻाल्हाए हा जी छा पुछणु चाहींदा
1: दादा
2: बिल्कुलु जॾहिं रग ब्लॉक थी वेंदी आहे त पोइ इन जे करे ई जेको आहे प्रॉब्लम थींदो आहे उन जे लाइ बहितरीन दवाऊं होम्योपैथिक में मौजूदु आहिनि ऐं मुकमल कोर्स मौजूदु आहे फस्ट एड तौर ते त तव्हां का बि मालिश कंदव ऐं उनमें ऐं घणा दोस्त मां मालिश जे लाइ बि हालांकि मना कंदो आहियां घणा मालिश कंदा आहिनि सो हाणे बि काफ़ी पेशंट्स आहिनि त असां मालिश कईसीं उन में वधीक सोज वधी वई ऐं वधीक तकलीफ़ वधी आहे हालांकि असां बार बार चवंदा आहियूं त इनखे मालिश न आहे करणी वधि में वधि असां ॾिसियल हिकिड़ो जीअं कुदरती तौर ते असां तेल ॿुधाईंदा आहियूं त सरह जो तेल आहे उनखे गरम करे उनमें हेठि विझी ऐं उहो तव्हां सिर्फ़ु अप्लाई कयो यानी अप्लाई करण जो मक़सदु इहो सिर्फ़ु तव्हां लॻाए छॾियो जॾहिं उहो अंदरि चमड़ी में जज़्ब थी वेंदो त रगुनि में ऐं हॾनि में पाण ई उहो पंहिंजी ताक़त रखंदो त उन सां ख़ुदि बि ख़ुदि जेको आहे सो तव्हांखे रिलीफ़ मिली वेंदो आहे पर उहो बि ॾिसो फस्ट एड तौर ते यानी आरज़ी तौर ते फ़िलहालु तव्हांजी तकलीफ़ खे घटाए सघे थो लेकिन मुकमल ट्रीटमेंट जे लाइ मुकमल दवा होम्योपैथिक में तव्हां इस्तेमालु कंदो तॾहिं अव्हांखे फ़ाइदो पवंदो
0: हिकु ॿियो कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे कॉल जी तरफ़ ईंदासीं अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम
0: सलाम सर ब्लड प्रेशर हाई थो रहे त हीअ असुलु छा आहे त अमर एजिड आहे बहितर आहे त रूबरू ॾेखारे वञे त वधीक बहितर आहे बाक़ी असां ॿुधो डॉक्टर ॿुधाईंदो
2: जी साईं बिल्कुलु मूंखे बि इहो ई ॾिसंदासीं त जेको आहे सो बिल्कुलु हिकु त चांहि ऐं खीरु ऐं मानी हुनजी बिल्कुलु बंदि करणी आहे सिर्फ़ु खिचड़ी इस्तेमालु करणी आहे केलो इस्तेमालु करिणो आहे केले में स्पंगुर जी दुही विझी उहा इस्तेमालु करणी आहे जीरो तव्हां उनखे फकराए सघो था चमची खनि उनखां पोइ हर खाधे खां पोइ सौंफ़ चूसराइसि उन सां बि काफ़ी अफ़ाको अची वेंदो आहे वरना दवा मौजूदु हूंदी आहे जेकॾहिं फ़र्क़ु

0: पइजी वञे थो हिन अमल सां ठीकु आहे वरना उहो बुरो ॾेखारे सघो लेकिन परहेज़ बि मस्ट आहे यानी चांहि खीर वग़ैरह अव्हांखे मुकमल बंदि करिणो आहे ओके
1: प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे ॾिसो किथां जो कॉलर हूंदो अस्सलाम वालेकुम हलो अस्सलाम वालेकुम पोइ सां ई ॻाल्हायो हलो जी मुंहिंजा साईं
2: इहो पुछंदासीं त माना जेको मथे में सूर माण्हू पवंदो आहे
1: जी जी अदा
0: जेकॾहिं शिदत घणी थींदी आहे ख़ासि करे मर्द त मथो कोन ॿधंदा आहिनि मथो त वरी बि औरतूं ई ॿधंदियूं आहिनि ऐं उहो उहे बि घर में ॿधंदियूं आहिनि ऐं मथो ॿधणु हिकिड़ो हैबिट आहे लेकिन मथे ॿधण सां को सूर सां को तालुक़ु न आहे उन सां को सूर झको न थींदो आहे वक़्ती तौर ते सिर्फ़ु हिकिड़े क़िस्म जी केरु माण्हू जीअं ज़ोर ॾियारे या जेको आहे सो इनहेलेशन कराए त उहा ई थींदी आहे लेकिन हिन सां को मथे खे को ॿधणु को इलाज न आहे जी साईं
3: वालेकुम सलाम केरु था ॻाल्हायो था
0: मिठी सोढ़ा इस्तेमालु करे सघे थो लौंग जो तेल इस्तेमालु करे सघे थो या फिर रूबरू ॾेखारे वञनि त उहो वधीक बहितर
1: सलाम आहे सिहत जी ॻाल्हि जी मेरा पर एफ एम 94 जो आवाज़ तव्हांजे समात में पहुचे पियो असांजे स्टूडियो में मौजूदु सिंध जो मशहूरु मारूफ़ डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन साहब बि कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे ॾिसो किथां कॉलर असां सां
3: वालेकुम अस्सलाम जी अदा जी जी अदा
1: केर साहब पियो ॻाल्हायो था जी जी छा पुछंदा डॉक्टर साहब खां
2: मूंखे घर वारी

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: हम लोग किसी बात पे यकीन नहीं करते,
2: हमने
1: जो भी है हमें दो।
2: बच्चों के टुकड़े देखे,
3: हमें जाने ही नहीं दे रहा, ना ही पुलिस इधर मौके पे थी, ना ही
4: तो
3: ये भी दो घंटे बाद आई। टोटल 31 बच्चे थे,
4: 31 बच्चे थे
3: जी, अभी उनका कंफर्म ही नहीं है, ये बता रहे हैं। टोटल 31 बच्चे थे जो इस वार्ड में, सेंट्रल वार्ड में थे, और सब मासूम बच्चे।
5: जब आग लगती है तो इंतजामिया का कोई बंदा आगे नहीं आता, इंतजामिया का बंदा नजर नहीं आता। नर्सरी के बाहर इतने इतने ताले उन्होंने लगाए हुए हैं अंदर की तरफ।
6: इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल के बारन वाले वार्ड के बाह लगी वही, 15 ताजा जावल बार सड़ी फौत, एक के बचाया वो। पिम्स के डायरेक्टर बाह साने में 15 बार के फौत थे की तस्दीक कर छी। अस्पताल इंतजामिया मूजिब वार्ड में 16 बार दाखिल हुआ, एक बार के बचाया वो। साने में फौत थे 14 बार मर्ड सुणा बाद वारसन हवाले किया वह। सड़ी फौत थे बार वारसन जहा इंतजामिया संगीन इल्जाम, वारसन मूजिब बाह पान लगी हा तो अमलो भी जख्मी थे हा। बाह वक्त बे अमलो बारन के बाहर करण बदरा पान भजी वे हो। पिम्सानेबाद वजीर आजम की सदारत हेठ आला सतही इजलास, लागापियल ऑफिसर से सख्त कावड़ जो इजहार। सेहत वाले फाकी सेक्रेटरी असलम गोरी के अहदे तां हटाए छो। साने की जांच लाए आला सतही कमेटी भी कायम, अगूणो सेक्रेटरी शाहिद खान कमेटी जो सरबराह होंद। वाक़े की शफाफ जांच कर जिम्मेवार खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। फोती बार के वारसन से हमदर्दी और दुख जो इजहार, शहबाज शरीफ चयो तो नुकसान जो अजालो नथो करे सकजे। कोताही कंदड़न के न छींदी, पान के बेहतसाब ला वजीर आजम आडो पेश किया है। ऑक्सीजन सबब बाह जल्द पखड़ी। सेहत वाले फाकी वजीर मुस्तफा कमाल चयो तो वार्ड में बार ऑक्सीजन लगल हुई, जै सबब बाह वधीक तेजी से भड़की, को भी शय लिकी न सकंदी, सब कुछ सामू इंदो। मुल्कती वजीर तलाल चौधरी चयो आहे त रेस्क्यू टीमों वाके वाले हंध जल्द पहुंतियूं हुयूं। पिम्स जे सीसीटीवी फुटेज समेत समूरी शाहिदियूं महफूज कयूं आहिन, जिम्मेवारन के न छड़ियो वेंदो। पिम्स साने ते समूरो मुल्क रोई रहियो आहे, सान्या रोकण लाइ एहतसाब ज़रूरी आहे। पिम्स सियासत करण न पर आवाम जा आहंज ॿुधण आया आहियूं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शेरी रहमान चयो आहे त जिम्मेवार वजीर के पानी इस्तीफा देण घुर्जे। फायर ब्रिगेड लाइ पंप्स जा दर बंद हुआ, वाटर टैंक्स भी खाली हुआ, डॉक्टर्स भी मौजूद न हुआ, अवाम तरफा भी सवाल पुछंदासीं।

मुसलमाननि खे विरहाइण वारी साज़िश खे फील्ड मार्शल सां गॾिजी नाकाम बणायो। अमन दुश्मन अंसर मुस्लिम मुल्कनि में नफ़रत पखेड़ण में नाकाम रहिया। सऊदी ऐं तुर्किया सदाई सुठे ऐं ख़राब वक़्त में पाकिस्तान जो साथ ॾिनो। इस्लामाबाद में सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म चयो त अॼोको इजतमा यादि ॾिराए थो त असां हिकु उमत आहियूं। नई नसुल क़ौम जी उमेदनि जो मर्कज़ आहे। नई नसुल खे मुल्क ऐं उमत जी तरक़ीअ लाइ किरदारु अदा करणो पवंदो।

0: सिंध समेत सॼी मुल्क में रहमतुल आलमीन ख़ातम अलंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसलम जी विलादत जो जशन मल्हायो पियो वञे। ॾींहं जी शुरूआति वफ़ाक़ी राजधानी में 31 तौबनि ऐं सूबनि में 21 तौबनि जी सलामी सां कई वई। मस्जिदनि में बि ख़ासि दुआउनि जो इहतमाम, मुल्की तरक़ी ऐं ख़ुशहाली लाइ ख़ासि दुआऊं घुरियूं वयूं। नंढनि वॾनि शहरनि में ॿिन्ही जहाननि जे सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसलम सां मुहबत ऐं अक़ीदत जो इज़हार। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, लाड़काणो, सखर ऐं शहीद बेनज़ीराबाद डिवीज़न जे नंढनि वॾनि शहरनि में रैलियूं कढियूं वयूं। हर तरफ़ नातन ऐं दुरूदनि जी बहार। कराचीअ में निकतल रैलीअ में वॾे वज़ीर मुराद अली शाह ऐं ॿियनि वज़ीरनि जी शिरकत। हैदराबाद डिवीज़न में ईद मिलादुलनबीअ जूं रैलियूं ऐं मेड़ाका, दादू, जामशोरो, मठियारी, बदीन, ठठो, सिजावल, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलियार में रैलियूं कढियूं वियूं। मातली, तलार, सेवण ऐं ॿियनि शहरनि में बि मेड़ाका, मरहबा या मुस्तफ़ा जा नारा। सखर ऐं लाड़काणे डिवीज़न में बि ईद मिलादुलनबी सलाहु अल वसलम जे सिलसिले में रैलियूं कढियूं वियूं। हर तरफ़ नातनि ऐं दुरूदनि जो विर्तु। घोटकी, खैरपुर, शिकारपुर, जैकबाबाद, कमर, शादात कोट ऐं कश्मोर ऐं कंदकोट में रैलियूं कढियूं वियूं। रोहड़ी, साले पट, पनवा, किल, डहरकी, उॿावड़ो, कोटली जी, गंबट, किंगरी ऐं सोबेदेरे में बि रैलियूं कढियूं वियूं। ॾोकरी, रतोदेरो, वारह, गढ़ी, यासीन, तंगवाणी समेत ॿियनि शहरनि में बि रैलियूं कढियूं वियूं। मीरपुर खास ऐं शहीद बेनज़ीराबाद डिवीज़न में बि 12 रबी अलवल जा प्रोग्राम, मिलाद जूं महफ़िलूं। उमरकोट, थरपारकर, सांगड़, नौशर, फिरोज, सकरण, मोरो, ठारू शाह, कंडियारो ऐं काज़ी अहमद में रैलियूं कढियूं वयूं। डिगड़ी, इस्लामकोट, नंगर पार्क, कुंडरी, सामारो ऐं ॿियनि शहरनि में बि रैलियूं कढियूं वयूं। ॿिन्ही जहाननि जे सरदार खे भेटा पेश। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पारां तहरान जे दौरे बाद अमरीका ऐं ईरान विच में जंग बंदीअ जा इम्कान वधी विया। अमरीका ऐं ईरान नई जंग बंदी ते इतफ़ाक़ करे वरितो। कुझु ॾींहनि में सरकारी सतह ते ऐलान कयो वेंदो। रूसी मीडिया जी दावा। ईरानी सरकारी मीडिया मूजिबि ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास राखी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सां फ़ोन ते राब्तो कयो। अब्बास राखी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सां खिते जी मौजूदा सूरत हाल ते ॻाल्हियूं कयूं। ईरानी सदर मसूद पशकियान चयो त
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 03-20-18-00-003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ, महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-335-569।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
3: न अदा।
5: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हाँ दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
3: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
6: 0301-399-2836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: है, मैं कुछ भी नहीं लेकिन सरकार से निस्बत है।
1: माशाल्लाह, जजाकअल्लाह। जिक्र ताहा से दिलों को चैन है, जिक्र ताहा से दिलों को चैन है, ये महीना फैज रब का जैन है। जिनकी कस्में मेरा रब खाता है, जिनकी कस्में मेरा रब खाता है, कितनी दिलकश मेरे सरकार की सूरत।
2: सुभान अल्लाह,
1: कोई मिसले मुस्तफ़ा का, कोई मिसले मुस्तफ़ा का
2: सुभान
1: कभी
2: अल्लाह,
1: था न है न होगा।
2: बेशक
1: कभी और का ये रुतबा कभी न था न है न होगा।
3: सुभान अल्लाह।
1: सादा साहब, आजकल हमारे माशरे में नफ़रतें, इंतहा पसंदी, अदम बर्दाश्त बढ़ती जा रही है। सीरत रसूल हमें इसका क्या हल देती है, तफसील से जो है।
3: जी, ये जो अलमिया है आज के मुआशरे का, जिसमें अदम बर्दाश्त और टॉलरेंस का जो है वह फुकदान है, इस्लामी तालीमात जो हैं वो हमें तहम्मुल, बुर्दबारी और ठंडे मिजाज जो है कि दर्स देती है ना, कि इंसान को जो है वो बर्दाश्त करना चाहिए। ये सिर्फ जो है वो एक बैठक की बात नहीं, इस वक्त जो सबसे बड़ा फितना है, इसमें जो किरदार अदा कर रहा है इस वक्त का, वो सोशल मीडिया है, जिसने जो है वो हमारे पूरे मुआशरे को जो है ना अखाड़ पछाड़ जो आई है, बर्दाश्त की कमी आई है, वो चाहे फ़िरका वारियत के हिसाब से हो, यानी किसी का भी एहतराम जो है वो सोशल मीडिया ने बिल्कुल जो है ना वो बहुत सूरत हाल ख़राब कर दी है। तो हमें चाहिए कि हम एक दूसरे के जो अकायद हैं उनका एहतराम करें और बर्दाश्त का मुजाहरा करें और एक दूसरों पर जनाब अली जो है वो कीचड़ ना उछालें, ये तकाजा है हमारा टॉलरेंस का, जिसकी कमी है बर्दाश्त की
1: मतलब
3: सख्त
1: सोशल
3: ज़रूरत
1: मीडिया जो है, मतलब वो मतलब अहम किरदार अदा कर रहा है इस मामले में जो
3: है।
1: है।
3: जी, सोशल मीडिया ने तो जो है वो पूरे मुआशरे की जो है ना वो बैंड बजाई हुई है इस हवाले से, जो इस वक्त
1: थोड़ा सा
3: देखिए
1: पैगाम
3: ना।
1: आपका जो है, मतलब आप जो यंग जनरेशन जो आजकल जो मतलब इस प्लेटफॉर्म पे जो है, मतलब जिसे
3: आज का
1: हर
3: जो
1: हर हर
3: दिन,
1: यंग जनरेशन के हाथ में मोबाइल और वो जो है।
3: आज का जो दिन है वो जश्न ईद मिलाद नबी का दिन है, हुजूर की आमद का दिन है, 12 रबीउल अव्वल का मुबारकबाद मुबारक दिन है। अब इस दिन पे जो है वो हुजूर की सीरत तैयबा वो हमारे लिए मशले रहा है ना,
1: बिल्कुल, बेशक बेशक
3: बाकी और क्या पैगाम हो सकता है कि हुजूर की जाते वाला सिफात जो है
1: जी,
3: वो हमारे लिए जो है वो एक नमूना है।
1: बेशक
3: तो हम जनाब अली उनकी जो है वो जो तालीमात है उन पर अमल करें, उसमें जनाब अली ये बर्दाश्त का भी जिक्र है
1: बेशक
3: और बायमी एहतराम का भी जिक्र है
2: बेशक
3: और उसमें जनाब अली जो है वो इत्तेहाद का भी दर्स है। जब आप जनाब अली आप में जो है वो एक दूसरे का एहतराम करेंगे तो आप मुत्तहद भी होंगे,
2: बेशक
3: तो कौमों का और मुआशरों का जो है वो मुत्तहद होना मुल्कों के लिए जो है वो मुल्कों की बका के लिए ज़रूरी होता है। तो हमारा ये जो मुल्क है पाकिस्तान जो है, इसकी तमाम इकाइयाँ जितनी भी हैं, वो सूबाई इकाइयाँ हों या मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोग हों, उनको चाहिए कि वो एक दूसरे का एहतराम करें, बर्दाश्त का मुजाहरा करें और इज्जत करें, तो इससे ही हमारा मुल्क जो है वो तरक्की कर सकता है, मुआशरा हमारा जो है वो अच्छे उसूलों पर गामजन हो सकता है। यही पैगाम है आज के दिन का।
1: माशाल्लाह माशाल्लाह, एक पैगाम तो आखिर में भी आपका पैगाम होगा, स्पेशल जो
3: जी
1: पूरी दुनिया के में
3: जी
1: मुसलमान के होगा, सिद्धि में एक आपका जो है अपना अच्छी हजूर की शान में जो
3: जी
1: है।
3: मान

फ़कीर हाणे ॾियोसि माफ़ी ख़ैर सां ख़ुशबाश ता महशर हुजे ॾियोसि माफ़ी ख़ैर सां ख़ुशबाश ता महशर हुजे थो घुरां अरबी त तुंहिंजे दर अॻियां

0: ये दो सिफतें हुजूर के किरदार के हवाले से ना, सादिक माने सच्चा,
1: बेशक
0: अमीन माने अमानतदार।
1: बेशक
0: तो नबुवत से पहले भी जो है वो जो आपका किरदार था वो ऐसे था कि जो गैर मुस्लिम थे वो भी अमानतें आपके पास रखवा के जाते थे, ठीक है ना। वो अमानतें आपके पास रखवा के जाते थे, आप पे जनाब अली उनका भरोसा था, क्योंकि आपकी ज़ात, आपका जो किरदार था वो बेहतरीन नमूना था। यानी कोई अगर कहे कि जनाब अली ये जो हैं वो ज़िंदगी में कभी खुदा न खास्ता, माज़ अल्लाह समझे, कभी उन्होंने कोई दरो गोई नहीं की, ठीक है ना। तो सरकार वाले सिफात की ये जो जो ये जो ये तो नबी है ना, इमाम उल अंबिया है, इमाम उल अंबिया के लिए सादिक और अमीन जो है ये तो उनके अलकाबात हैं, जो
1: माशाल्लाह
0: किरदार के हवाले से
1: माशाल्लाह
0: कि ये काम हो सकता है उसको मौजूदा कहते हैं। अगर वो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से कोई काम होगा तो वो करिश्मा कहलाएगा, कि ये कुदरत का करिश्मा है।
1: करिश्मा जो है
0: वो
1: माशाल्लाह
0: काम जो है अगर खुदा की तरफ से होगा तो करिश्मा कहलाएगा, ऐसा ही काम अगर किसी नबी की तरफ से होगा तो वो जो है मौजूदा कहलाएगा। फिर इसी किस्म का कोई काम अगर किसी वली से होगा तो वो करामत कहलाएगी।
1: माशाल्लाह
0: तो ये तीन जो हैं वो काइंड्स हैं, तीन अकसाम हैं, करिश्मा, मौजूदा और करामत। अब सरकार की जो ज़ात है उनसे वाबस्ता जितने भी इस किस्म के आमाल हैं उनका मौजूदा कहते हैं। तो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है वो सारे मौजूदों से भरी हुई है, ठीक है ना। तो आप देखें कि जो हुजूर का सबसे बड़ा मौजूदा है वो कुरान है।
2: बेशक
0: जो कुरान है ये हुजूर का सबसे बड़ा जिंदा और जावेद जो है वो मौजूदा है, कि कुरान इतनी ज़खीम किताब है समझे, कि उसको अल्लाह तबारक व ताला ने इतना आसान बनाया है, इतना आसान बनाया है कि हुजूर की उम्मत के जो है वो 10 साल के बच्चे इसको हिफ़िज़ कर लेते हैं,
1: माशाल्लाह
0: अंदाज़ा लगाएं समझे ना। 10 साल का बच्चा जो है पूरे कुरान को अपने सीने में समाता है, ये कुरान का एजाज़ है, ठीक है ना। और कुरान जो है वो अल्लाह का कलाम है और पूरा कुरान जो है हुजूर की नात है।
2: अल्लाह
1: अल्लाह
0: कोई कहे कि जनाब अली हुजूर की नात जो है तो कुरान पूरा, आप जनाब अली कुरान पढ़ते जाएं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जो है अलहम से वन्नास तक जो है वो होता जा रहा है। कुरान कहता है इन्ना अरसलना का शाहिदं व मुबशिरं व नज़ीरा, कि हमने अपने महबूब को जो है वो शाहिद बनाकर भेजा। शाहिद कहते हैं गवाह को, शायद वो होता है जो मौजूद होता है। इन्ना अरसलना का शाहिदं व मुबशिरं, खुशखबरी सुनाने वाला बना के भेजा। व नज़ीरा, डराने वाला, डराने वाला बनाकर भेजा। शाहिद बनाकर भेजा, खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर भेजा, डराने वाला बनाकर भेजा। व दाइयन इल्लल्लाह, है और दावत देने वाला, अल्लाह की तरफ दावत देने वाला जो है ना, सिराज मुनीर, सिराज और मुनीर, रोशन सूरज बनाकर भेजा। ये कुरान जो है वो हुजूर की जो है वो तारीफ तो कर रहा है, नात तो बयान कर रहा है। और जनाब अली इसके बाद अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान हकीम में इरशाद फरमाया वलो अन्नहुम इज़्ज़लमु अन्फुसहुम जाऊक, लोगो अगर तुम अपने जानों पर जुल्म कर बैठो यानि तुमसे गुनाह कबीरा सरजद हो जाए, फरमाया कि जाओ कर फिर तुम मेरे महबूब के दरवाजे पे जाओ और वहां जाकर क्या करो, फस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से माफी तलब करो, वस्तगफर लहुम रसूल, और मेरा महबूब तुम्हारी सिफारिश करे, लवजदुल्लाह तवाब रहीमा, फिर मैं तुम्हारे पे मेहरबान होऊंगा। अल्लाह तबारक व ताला कह रहा है, पता चला कि अल्लाह तबारक व ताला ने अपने महबूब का जो मकाम और मर्तबा अजमत है वो कुरान पाक में बयान किए, कि कोई भी मेरे पास जो है वो गुनाहों की माफ़ी के लिए अगर डायरेक्ट रब्ता करता है तो उसके गुनाह माफ़ नहीं होंगे जब तक कि मेरे महबूब के दरवाजे पे न जाए या उसका तवस्सुल पेश न करे, उसका सदका पेश न करे। जो है अल्लाह ताला ने कुरान फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया इन्नल्लाह وملائکتہ

0: के बच्चे दब जले अभी गायब हुए हूँ। किसी वर्जन पर उन्होंने
1: डॉक्टर ने कहा कि डब्बे में बच्चे लेके गए और उस SHO नदीम ने बोला है हम में से किसी ने बच्चे के टुकड़े भी नहीं देखे। हम लोग किसी बात पे यकीन नहीं करते।
0: हमने जो भी है हमें दो देखी है ना बच्चों के टुकड़े देखे।
2: हमें जाने ही नहीं दे रहा, ना ही पुलिस इधर मौके पे थी ना ही तो ये भी दो घंटे बाद आई। टोटल 31 बच्चे थे।
3: 31 बच्चे थे
2: जी, अभी उनका कन्फर्म ही नहीं है। ये बता रहे हैं टोटल 31 बच्चे थे जो इस वार्ड में चिल्ड्रन वार्ड में थे, वो सब मासूम बच्चे।
4: जब आग लगती है तो इंतजामिया का कोई बंदा आगे नहीं आता, इंतजामिया का बंदा नजर नहीं आता। नर्सरी के बाहर इतने इतने ताले उन्होंने लगाए हुए हैं अंदर की तरफ।
5: इस्लामाबाद जी पेम्स अस्पताल के बारन वाले वार्ड के बाह लगी वही। 15 ताजा जावल बार सड़ी फौत, एक के बचाए वो। पेम्स के डायरेक्टर बाहसाने में 15 बार के फौत थे की तस्दीक कर छी। अस्पताल इंतजामिया मूजिब वार्ड में 16 बार दाखिल हुआ, एक बार के बचाए वो। साने में फौत थे 14 बार मर सुण बाद वारसन हवाले। सड़ी फौत थे बार के वारसन जहा इंतजामिया संगीन इल्जाम। वारसन मूजिब बाह पान लगे हाथ अमलो भी जख्मी थे हा। बाह वक्त बे अमलो बारन के बाहर करण बदरा पान भजी वे हो। पिम्स सानेबाद वजीर आजम की सदारत हेठ आला सतही इजलास, लागापियल ऑफिसरन ते सख्त कावड़ जो इजहार। सेहत वारे फाकी सेक्रेटरी असलम गोरिया के अहदे तां हटायो वो। साने की जांच लाए आला सतही कमेटी कायम। अगूणो सेक्रेटरी शाहिद खान कमेटी जो सरबराह होंदो। वाके की शफाफ जांच करे जिम्मेवार खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। फौती बारन के वारसन से हमदर्दी ए दुख जो इजहार। शहबाज शरीफ चो तो नुकसान जो अजालो न थो करे सकजे। कोताही कंदड़न के न छींदी पान के बेहतसाब लाए वजीर आजम आदो पेश किया है। ऑक्सीजन सबब बाह जल्दी पखड़ी। सेहत वाले फाकी वजीर मुस्तफा कमाल चाहे तो वार्ड में बारन के ऑक्सीजन लगल हुई जैं सबब बाह वधीक तेजी से भड़की थी। का भी शय लिकी न सकंदी, सब कुछ सामू इंदो। मुमलकती वजीर तलाल चौधरी चयो त रेस्क्यू टीमू वाके वारे हंध जल्द पहुंती हुयूं। पिम्स के CCTV फुटेज समेत समूर शाहिदू महफूज क्यों आन, जिम्मेवार के न छो वो। पिम्स साने ते समूरो मुल्क रोई रो है। सान्या रोकण ला एहतसाब जरूरी है। पिम्स सियासत करण न पर अवाम जा अंज बुधण आया आयूं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शेरी रहमान चया है जिम्मेवार वजीर के पानी इस्तीफा दियण घुर्जे। फायर ब्रिगेड लाए पिम्स जा दर बंद हुआ, वाटर टैंक्स भी खाली हुआ, डॉक्टर भी मौजूद न हुआ। अवाम तरफा भी सवाल पुछंदासी। सान्यो किंज पेश आयो, पिम्स अस्पताल के इंतजामिया शुरुआती रिपोर्ट तैयार कर वरती। रिपोर्ट में चयो वियो आहे त NICU में इनक्यूब्यूटर सां गॾु ऑक्सीजन वारो नेबोलाइज़र फाटो। नेबोलाइज़र फाटण सबबि ऑक्सीजन मां बाह पखड़ी। ऑक्सीजन बंदि थियण ऐं सड़ण सबबि ॿारनि जो मौत थियो आहे। इस्लामाबाद जी फायर ब्रिगेड पिम्स में बाह वसाइण वारनि इंतज़ामनि खे नाकाफ़ी करार ॾेई छॾियो। बाह खां बचाव वारनि इंतज़ामनि ते बि सवाल उथारे छॾिया। इस्लामाबाद फायर ब्रिगेड के शुरुआती रिपोर्ट में पिम्स अस्पताल बाबत छिड़काइंदड़ इंकशाफ। रिपोर्ट मूजिब अस्पताल के दरवाजन ते भी ताला लगल हुआ, इमरजेंसी गेट भी मौजूद न हो। पिम्स थाने ते मुल्की सियासी क्यादत दुखारी। फौती बारन के वारसन से हमदर्दी जो इजहार। सदर आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, मोहसन नकवी, वे वजीर मुराद अली शाह, सीनियर वजीर शर्जील मेमण बेन पारा दुख जो इजहार। सदर आसिफ जरदारी चयो तो साने की जिम्मेवार तयन कर कार्रवाई कई वे। बिलावल भुट्टो चयो तो पिम्स सानो इंसानी तारीख जो बदतरीन वाक्यो है। मुराद अली शाह जो चवण हो तो पिम्स सानो अफसोसनाक ए दुखाइंदड़ है। शर्जील मेमण चयो तो मुतासर की दुख में बराबर जा शरीक आयो।
6: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वगे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। हर जुमे छंछर ऐं आचर ते बगैर फीस जे चेकअप कयो वेंदो। याद रखंदा, मरीजन के दवा स्टोर तां वठणी पवंदी। माहिरे अमराज़ नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमज़ोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपाटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो। गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301 2196 851।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बैरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
3: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीमो तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 0300-00-27234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 0301-386-5453।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
5: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
4: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
5: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 0300-320-4372-0242-46-0100।
2: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिकर छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही रابطہ करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
6: आ अंगन की दूध कयो गद की गुजारूंगा। السلام علیکم ادا.
7: وعلیکم السلام ادا, چھو پریشان آئیں؟
6: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو, چھا کجے؟
7: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی؟
6: نہ ادا.
4: یار اج کل شرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو, مو پنجو دکان کھولیو تے ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی, کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
6: مجھے دکان جی بے ڈرندی؟
7: ہاں ادا, کاروباری اشتہارات, عام اطلاع, میلاد, مجلس, سالگرہ جی مبارک, مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے.
6: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدھا.
4: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
8: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور, اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। हर जुमे छंछर ऐं आचर ते बग़ैर फीस जे चेकअप कयो वेंदो। यादि रखंदा मरीज़नि खे दवा स्टोर तां वठणी पवंदी। माहिरे अमराज़ नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमज़ोरी कन जो वहण कन जो सूर घटि ॿुधण में अचणु शुगर ब्लड प्रेशर दिलि जा मर्ज़ फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपाटाइटस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो। गुर्दनि जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि।
1: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
2: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 and 02424601000।
3: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो GFM 94।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
4: न अदा।
1: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठनि में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
4: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मीलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर क़िस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
4: अदा जल्दी कर, मुखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
1: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर। राब्ते लाइ मंसूर अहमद मेमण 0301-380-83।

जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन

0: ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GFM 94।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: जाने नहीं दे रहा, ना ही पुलिस इधर मौके पे थी, ना ही
2: तो ये भी दो घंटे बाद आई। टोटल 31 बच्चे थे,
3: 31 बच्चे थे
2: जी। अभी उनका कन्फर्म ही नहीं है, ये बता रहे हैं। टोटल 31 बच्चे थे जो इस वार्ड में, चिल्ड्रन वार्ड में थे, वो सब मासूम बच्चे।
4: जब आग लगती है तो इंतजामिया का कोई बंदा आगे नहीं आता, इंतजामिया का बंदा नजर नहीं आता। नर्सरी के बाहर इतने इतने ताले उन्होंने लगाए हुए हैं अंदर की तरफ।
5: इस्लामाबाद की पिम्स अस्पताल की बारन वाले वार्ड के बाह लगी वही, 15 ताजा जावल बार सड़ी फौत, एक के बचाए वो। पिम्स के डायरेक्टर बाह हसाने में 15 बार के फौत थे की तस्दीक कर छी। अस्पताल इंतजामिया मूजिब वार्ड में 16 बार दाखिल हुआ, एक बार के बचाया वो। साने में फौत थे 14 बार मर्द सुबाद वारसन हवाले। सड़ी फौत थे बारन के वारसन जहा इंतजामिया संगीन इल्जाम। वारसन मूजिब बाह पान लगी हा तो अमलो बे जख्मी थे हा। बाह वक्त बे अमलो बारन के बाहर खड़न बदरा पान भजी वे हो। पिम्स सानेबाद वजीर आजम की सदारत हेठ आला सतही इजलास, लागापियल ऑफिसर से सख्त कावड़ जो इजहार। सेहत व रिफाकी सेक्रेटरी असलम गोरिया के अहदे तां हटाए छो। साने की जांच लाए आला सतही कमेटी भी कायम, अगूणो सेक्रेटरी शाहिद खान कमेटी जो सरबराह हों। वाक़े की शफाफ जांच कर जिम्मेवार खिलाफ़ कार्रवाई की हिदायत। फौती बारन के वारसन से हमदर्दी ए दुख जो भी इजहार। शहबाज शरीफ चयो त नुकसान जो अजालो नथो करे सकजे। कोताही कंदड़न के न छींदी, पान के बेहतसाब लाए वजीर आजम आडो पेश कयो आहे। ऑक्सीजन सबब बाह जल्द पकड़बी। सेहत व रिफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल चयो आहे त वार्ड में बारन के ऑक्सीजन लगल हुई, जैं सबब बाह वधीक भड़की उथी, का भी शै लिकी न सघंदी, सब कुछ सामू ही। मुमलकती वजीर तलाल चौधरी चयो त रेस्क्यू टीमू वाके वारे हंध जल्द पहुंती हुई। पिम्स के सीसीटीवी फुटेज समेत समूरी शाहिदी महफूज क्यों आन, जिम्मेवार के न छो वो। पिम्स साने ते समूरो मुल्क रोई रो है, सान्या रोकण ला एहसाफ जरूरी है। पिम्स सियासत करण न पर आवाम जहा आहंज बुध आया आयु। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान चया है तो जिम्मेवार वजीर के पानी इस्तीफा दियण घुर्जे। फायर ब्रिगेड लाए पम्प्स जहा दर बंद हुआ, वाटर टैंक्स भी खाली हुआ, डॉक्टर्स भी मौजूद न हुआ, आवाम तरफा भी सवाल पुछंदी। सान्यो कि पेश आयो, पिम्स अस्पताल की इंतजामिया शुरुआती रिपोर्ट तैयार कर वरती। रिपोर्ट में वो है तो NICU में इनक्यूबेटर से गड ऑक्सीजन वो नेबोलाइजर्स फाटो, नेबोलाइजर्स फाटन सबब ऑक्सीजन बाह पखड़ी, ऑक्सीजन बंद थे सड़न सबब बारन जो मौत थो। इस्लामाबाद की फायर ब्रिगेड पिम्स में बाह विसायण वाले इंतजाम के नाकाफी करार दे छो, बाह का बचाव वाले इंतजाम से भी सवाल उथारे छा। इस्लामाबाद फायर ब्रिगेड की शुरुआती रिपोर्ट में पिम्स अस्पताल बाबत छिड़काइंदड़ इंकशाफ। रिपोर्ट मूजिब अस्पताल के दरवाजन से भी ताला लगल हुआ, इमरजेंसी गेट भी मौजूद न हुआ। पिम्स साने ते मुल्की सियासी क्यादत डुखारी, फौती बारन के वारसन से हमदर्दी जो इजहार। सदर आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, मोहसन नकवी, वडे वजीर सैद मुराद अली शाह, सीनियर वजीर शर्जील मेमण बेन पारा साने ते दुख जो इजहार। सदर आसिफ जरदारी चयो त साने जी जिम्मेवारन जो तौइन करे कार्रवाई कई वञे। बिलावल भुट्टो चयो त पिम्स सान्यो इंसानी तारीख जो बदतरीन वाक़ियो आहे। मुराद अली शाह जो चवण हो त पिम्स सान्यो अफसोसनाक ऐं ॾुखाईंदड़ आहे। शर्जील मेमण चयो त मुतासिरन जी ॾुख में शरीक आहियूं। मोहसन नकवी जो चवण हो तो साने ते दिली सदमो रसियो, संदन दुख में बराबर जा शरीक आयूं। मुसलमानन के विरायण वारी साजिश के फील्ड मार्शल से गड़ी नाकाम बनायो। अमुन दुश्मन अंसर मुस्लिम मुल्कन में नफरत पखेड़न में नाकाम रहा। सऊदी ए तुर्किया सदाई सुठी ए खराब वक्त में पाकिस्तान जो साथ दिनों। इस्लामाबाद में सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस के खिताब कदे वजीर आजम चयो त जो को इज्तमा याद दिलाए तो अस एक उम्मत आयूं। नए नस्ल कौम की उम्मीदन जो मरकज़ है, नई नस्ल के मुल्क उम्मत की तरक्की लाए किरदार अदा करो पवो।

0: محمد آيو سلم.
1: सिंध समेत समरी मुल्क में रहमतुल आलमीन खातिम लंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत जो जशन अकीदत के एहतराम से मल्हायो वियो। ॾींहं जी शुरुआत वफाकी राजधानी में 31 तौबन ए सूबन में 21 तौबन की सलामी से कई वही। मस्जिदन में भी खास दुआउन जो इहतमाम, मुल्की तरक्की ए खुशहाली लाइ खास दुआउं घुरियूं वयूं। नंढन वॾनि शहरन में बिन्ही जहाननि जे सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां मुहबत ऐं अक़ीदत जो इज़हार कयो वियो। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, लाड़काणो, सखर ऐं शहीद बेनज़ीर आबाद डिवीज़न जे नंढनि वॾनि शहरनि में बि रैलियूं, हर तरफ़ नातन ऐं दुरूदनि जी बहार। कराची जे बि मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में रैलियूं कढियूं वयूं। मर्कज़ी रैलीअ में वॾे वज़ीर मुराद अली शाह ऐं ॿियनि वज़ीरनि जी शिरकत। सिक्योरिटी जा इंतिज़ाम इंतिहाई सख़्तु रखिया विया।

हैदराबाद डिवीजन में ईद मिलादुलनबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रैलियूं ऐं मेड़ा का दादू जामशोरो मटियारी बदीन ठठो सजावल टंडो मोहम्मद खान ऐं टंडे अलियार में रैलियूं कढी वयूं। मातली तलार सेवण जोही मेहड़ चंबड़ चूहड़ जमाली सईदाबाद ओडेरो लाल ऐं ॿियनि शहरनि में बि मेड़ा का मुख़्तलिफ़ शहरनि में रैलियूं कढी मेलाद कराया विया। मरहबा या मुस्तफ़ा जा नारा। सखर ऐं लाड़काणे डिवीज़न में ईद मिलादुलनबी सलाहु अल वसलम जे सिलसिले में रैलियूं हर तरफ़ नातन ऐं दुरूद जो विर्द। घोटकी खैरपुर शिकारपुर जेकबाबाद कंबर शहदाद कोट ऐं कश्मूर ऐं कंदकोट में रैलियूं कढियूं वयूं। रोहिड़ी सालेपट पनवाकिल डहरकी उॿावड़ो कोट डिजी गंबट किंगरी ऐं सूबे देरे में बि रैलियूं। रतोदेरो वारह गढ़ी यासीन तंगवाणी गढ़ खैरो मेरो खान ऐं ॿियनि शहरनि में बि रैलियूं कढी वयूं। हर पासे मरहबा या मुस्तफ़ा जा नारा। मीरपुर खास ऐं शहीद बेनज़ीराबाद डिवीज़न में बि ॿारहं रबीउल अव्वल जा प्रोग्राम मेलाद जूं महफ़िलूं। उमरकोट थरपारकर सांगड़ नौशहरो फिरोज़ सकरण मोरो ठारू शाह कंडियारो ऐं काज़ी अहमद में रैलियूं कढियूं वयूं। जुडो डिगड़ी इस्लामकोट नंगर पारकर कुंडी सामारो ऐं ॿियनि शहरनि में बि रैलियूं कढियूं वयूं।

0: फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पारां तहरान के दौरे बाद अमेरिका और ईरान विच में जंगबंदी का इम्कान वधी विया। अमेरिका और ईरान नई जंगबंदी से तफा करे वरतो। कुछ डी में सरकारी सतह से ऐलान भी कयो वेंदो। रूसी मीडिया की दावा। ईरानी सरकारी मीडिया मूजिब ईरानी परदेही वजीर अब्बास राखची फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से फोन से राबतो कयो। अब्बास राखची फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से खिते की सूरत हाल से भी गालू कयो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मैरापुर असा वट जगह जो डारियों जगह जा पावा पाइप डेढ़ ब चार छह नव बारह इंच में प्लेन कॉलम में मौजूद आहिन। फौजी भाइरन लाए खसूसी रियायत होंगी। राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 तौकीर अहमद 0306-1623-793।
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जैमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाए 0320180003।
4: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
5: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
6: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई।
5: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
6: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372-0242-460100।
3: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जैमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राबते जिले आसिम हुसैन आराई 0307-3592-120।
7: السلام علیکم ادا.
8: وعلیکم السلام ادا، چھو پریشان آئیں؟
7: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے؟
8: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی؟
7: نہ ادا
5: یار، اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
7: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی؟
8: ہاں ادا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے.
7: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبودا.
5: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالیج حالانی روڈ میرا پر.
8: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
9: 0301-399-2836.
10: مہراپور کے ہو تو آواز بھی مہراپور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर और सूमर से सुबह 10 का शाम 5 वगे तीन मरीजन जो इलाज कंदा हर जुमे छंछर आचर से बगैर फीस के चेकअप कर याद रखंदा मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी। माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निचो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वहन कन जो सूर घट बुधन में अचन शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वदन जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधन मर्दन औरतन में वजन जो न वधन उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 03016196851।
0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ। बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385569। खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।

जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 ने

0: क्या पता कि बच्चे 10 जने अभी गायब हुए हैं। किसी वजन पर उन्होंने
1: बताया डॉक्टर ने कहा कि डब्बे में बच्चे लेके गया और उस एसएचओ नदीम ने बोला है हम में से किसी ने बच्चे के टुकड़े भी नहीं देखे। हम लोग किसी बात पे यकीन नहीं करते।
0: हमने जो भी है हमें दो देखी है ना बच्चों के टुकड़े देखे।
2: जाने नहीं देगा ना ही पुलिस इधर मौके पे थी ना ही तो ये भी दो घंटे बाद आई टोटल 31 बच्चे थे।
3: 31 बच्चे थे
2: जी अभी उनका कंफर्म ही नहीं है ये बता रहे हैं टोटल 31 बच्चे थे जो इस वार्ड में सेंट्रल वार्ड में थे वो सब मासूम बच्चे।
4: जब आग लगती है तो इंतजामिया का कोई बंदा आगे नहीं आता इंतजामिया का बंदा नजर नहीं आता। नर्सरी के बाहर इतने इतने ताले उन्होंने लगाए हुए हैं अंदर की तरफ

इस्लामाबाद जी पिम्स अस्पताल के बार वाले वार्ड के बाह लगी वही 14 ताजा जावल बार सड़ी फोत एक के बचाया वो पिम्स के डायरेक्टर बासाने में 14 बार के फोत थे तस्दीक कर छी अस्पताल इंतजामिया मूजिब वार्ड में 15 बार दाखिल हुआ एक बार के बचाया वो साने में फोत थे 14 बार मर्द सुणा बाद वारसन हवाले सड़ी फोत थे बार वारसन जहा इंतजामिया संगीन इल्जाम वारसन मूजिब बाह पा लगे हा तो अमलो भी जख्मी थे हा बाह वक्त भी अमलो बार के बाहर कढ़ बदरा पा भजी वो हो पिम्स सानेबाद वजीर आजम की सदारत हेठ आला सतह इजलास लागापियल ऑफिसर से सख्त कावड़ जो इजहार सेहत वाले फाकी सेक्रेटरी असलम गोरिय के अहदे त हटाए छो साने की जांच लाए आला सतह कमेटी भी कायम अगूणो सेक्रेटरी शाहिद खान कमेटी जो सरबराह होंद वाक़े की शफाफ जांच कर जिम्मेवार खिलाफ़ कार्रवाई की हिदायत फौती बार के वारसन से हमदर्दी दुख जो इजहार शहबाज शरीफ चो तो नुकसान जो अजालो न कोताही कंदड़न के न छींदी पान के बेहतसाब ला वजीर आजम आडो पेश किया है ऑक्सीजन सबब बाह जल्दी पखड़ी सेहत वाले फाकी वजीर मुस्तफा कमाल चुका है तो वार्ड में बारन के ऑक्सीजन लगल हुई जै सबब बाह वधिक भड़की का भी शय लिकी न सगंदी सब कुछ सामू इंदो मुमलकती वजीर तलाल चौधरी जो चवण हो तो रेस्क्यू टीमू वाके वाले हंध जल्द पहुंती हुई पिम्स के सीसीटीवी फुटेज समेत समूरी शाहिदू महफूज कई व्यू हैं जिम्मेवार के न छो वो पिम्स साने ते समूरो मुल्क रोई रो है साना रोकण लाइ एहतसाब जरूरी है पिम्स सियासत करना पर आवाम जहा अंज बुधण आया आयू पीपल्स पार्टी के सेनेटर शेरी रहमान चुका है जिम्मेवार वजीर के पानी इस्तीफा दियण घुर्जे फायर ब्रिगेड लाइ पिम्स जहा दर बंद हुआ वाटर टैक्स भी खाली हुआ डॉक्टर भी मौजूद न हुआ आवाम तरफा भी सवाल पुछंदी सानियो किन पेश आयो पिम्स अस्पताल की इंतजामिया शुरुआती रिपोर्ट तैयार कर वरती रिपोर्ट में चो NICU में इनक्यूबेटर से गड ऑक्सीजन वो नेबोलाइजर्स फाटो नेबोलाइजर्स फाटन सबब ऑक्सीजन में बाह पखड़ी ऑक्सीजन बंद थे सड़न सब बार मौत थो है इस्लामाबाद के फायर ब्रिगेड पिम्स में बाह विसारण वाले इंतजाम के नाकाफी करार दे छो बाह के बचाव वाले इंतजाम से भी सवाल उथारे छाया इस्लामाबाद फायर ब्रिगेड की शुरुआती रिपोर्ट में पिम्स अस्पताल बाबत छिड़कंदड़ इंकशाफ रिपोर्ट मूजिब अस्पताल के दरवाजन से भी ताला लगल हुआ इमरजेंसी गेट भी मौजूद न हुआ पिम्स साने ते मुल्की सियासी क्यादत डुखारी फौती बार के वारसन से हमदर्दी जो इजहार सदर आसिफ जरदारी बिलावल भुट्टो मोहसन नकवी वे वजीर मुराद शाह सीनियर वजीर शर्जील मेमण बेन पारा साने ते दुख जो इजहार सदर आसिफ जरदारी चो तो साने के जिम्मेवार तयन कर कार्रवाई कई वे बिलावल भुट्टो जरदारी चो तो पिम्स सानो इंसानी तारीख जो बदतरीन वाक्य है मुराद अली शाह चो तो पिम्स सानो अफसोसनाक दुखाईंदड़ है शर्जील मेमण चो तो मुतासरन की दुख में बराबर जो शरीक आयु मोहसन नकवी चो तो साने ते दिली सदमो रसियो आहे मुसलमानन के विरहाइण वाली साजिश के फील्ड मार्शल से गड़जी नाकाम बणायो अमन दुश्मन अंसर मुस्लिम मुल्कन में नफरत पखेड़न में नाकाम रहा सऊदी ए तुर्की सदाई सुठी ए खराब वक्त में पाकिस्तान जो साथ दिनो इस्लामाबाद में सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस के खिताब कंदे वजीर आजम चयो त जो को इज्तमा याद डराए तो असा एक उम्मत आयूं नए नस्ल कौम की उम्मीदन जो मर्कज़ है नई नस्ल के मुल्क उम्मत की तरक्की लाए किरदार अदा करना पवंदो

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GAFM 94।